बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।

जी हाँ, उठो उठो, उठ जाओ, गुड मॉर्निंग। क्योंकि आज का मॉर्निंग अभी से नहीं बल्कि काफी देर से शुरू हो चला है, क्योंकि आज एक नहीं दो दो पूजा हो रही है। जी हाँ, आपको मालूम है कि विश्वकर्मा पूजा के साथ साथ रान्ना पूजो यानी कि रंधन पूजो भी आज है, और दोनों की खुशियां यानी कि वो कहते हैं ना, एक के साथ एक फ्री डबल डबल बोनांजा मिला हुआ है हमें। तो जाहिर सी बात है भाई, आप सब सुबह उठ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज होता है आप सबको गुड मॉर्निंग कहने का। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग कोलकाता, गुड मॉर्निंग इंडिया। एक बार फिर पॉपी है आपके साथ, ओनली ऑन 107 विद लवली लवली साउंड ट्रैक्स। सुनते रहिए, साथ रहिए, बहुत सी बातें भी बताऊंगी, क्योंकि क्योंकि जिंदगी जो है ना, जिंदगी सिर्फ और सिर्फ चार कदम की है।

इससे पहले के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं, एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 28 अक्टूबर को अपराह्न यानी कि दोपहर 12:30 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल, योगायोग भवन, P36 CR एवेन्यू, कोलकाता 7000012 में गूगल मीट यानी कि वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल, P36 CR एवेन्यू, कोलकाता 7000012 के नाम से भेजी जाए। और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in अथवा adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। मेल आईडी एक बार फिर से दोहराते हैं, cpmg_westbengal@indiapost.gov.in अथवा adpgcowestbengal@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट यानी कि वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष से भी संपर्क कर सकते हैं और दूरभाष संख्या इस प्रकार है 0332212050। हर संख्या के आगे 0333 लगाना है, 2212061 2212061 अथवा 2212052 2212052 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत अथवा पेंशन अदालत के आवेदनों अथवा ईमेल पर डाक अदालत अथवा पेंशन अदालत शब्द लिखना होना चाहिए, अर्थात ये अनिवार्य है। तो ये थी एक महत्वपूर्ण सूचना। फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गपशप, नॉनस्टॉप गपशप, और इस नॉनस्टॉप गपशप में कोई भी ब्रेक नहीं है, इसलिए आप हमसे बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हमारा हॉटलाइन नंबर आपको मालूम है 2213-1341, जहाँ पे पॉपी आप सभी का इंतजार कर रही है। स्टूडियो की घड़ी 10:15। फिलहाल अगला गीत, एक और खूबसूरत गीत, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई होप यू विल टू एंजॉय इट। आवाज़ है के की।

बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।

0: 26 past 10 यानी कि 10:26 आप सुन रहे हैं AIR FM रेनबो पर नॉन स्टॉप गपशप। और आपको बता दूं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि डबल डबल बोनांजा यानी कि आज विश्वकर्मा पूजा और साथ साथ रान्ना पूजो, हर साल ये दोनों हम एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। और विश्वकर्मा आप तो जानते ही हैं कि शिल्प और निर्माण के देवता, या आप तो ऐसा भी कह सकते हैं कि गॉड ऑफ कंस्ट्रक्शन, गॉड ऑफ आर्किटेक्चर, गॉड ऑफ हर औजार। जी हाँ, फिर वो चाहे हथौड़ी हो, छेनी हो, कुछ भी जो कि कंस्ट्रक्शन और क्रिएटिविटी से जुड़ा है, वो है विश्वकर्मा जी का भक्त या विश्वकर्मा जी से जुड़े हुए जो कम्युनिटी है। और ये जो पूजा है, खास करके आपको बताऊं कि ये मजदूर, कारीगर, इंजीनियर, मिस्त्री, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग जो भी हैं, ये हर कोई, और हर कोई देखिए, हमें से हर कोई किसी न किसी भी प्रकार से, किसी भी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है सम सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर कोई कोई भी काम करे, कोई भी औजार को यूज़ करे, तो वो विश्वकर्मा की रहमो करम पे हैं, हम कह सकते ईश्वर, मतलब वो ईश्वर हैं जो हमें इस क्षेत्र में, इस स्पीड में हमें प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि देते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा देवताओं के शिल्प माने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने ही द्वारका नगरी, इंद्र का वज्र, यहां तक कि रावण की लंका और पांडवों के लिए जो इंद्रप्रस्थ था, उसका भी निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। उन्हें संसार का पहला इंजीनियर, पहला आर्किटेक्चर माना जाता है। और इनके चार हाथ होते हैं, जिनमें स्केल होता है, हथौड़ा होता है, और एक होता है साथ में। एक चीज जो खास होती है वो होती है, मुझे मालूम है आप सब जानते हैं, क्योंकि आज उसका भी फेस्टिवल है। और हाँ, एक हाथ में पतंग होता है। तो ये जो पतंग खेलने का जो अवसर आज के दिन मिलता है, हर लोग, हर तबके के लोग, हर उम्र के लोग आज इस दिन को एंजॉय करते हैं। और घर के छतों में माइक्स लगा के, बॉक्स लगा के, जो म्यूज़िक सिस्टम लगा के, नीचे की घर की महिलाएं जो होती हैं वो किचन संभालती हैं, तरह तरह पकवान बनते हैं, वो उस वो कहते हैं ना कि वो बैलेंस करती हैं। और घर के जो पुरुष हैं, लड़के हैं, वो ज़्यादातर आपको पतंग उड़ाते हुए दिखेंगे। तो आज जो आसमान है वो बिल्कुल पतंगों से छाया रहता है, लेकिन आज कहना कि बारिश होने की संभावना है, तो बी केयरफुल, आपके पतंग को कहीं जैसे कि नज़र ना लगे। वैसे आजकल ना बहुत सारे तरीके के, बहुत तरह तरह के पतंग आसमान में उड़ते दिखते हैं, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अभी आप जो सुन रहे हैं वो है 107 FM रेनबो पर, कार्यक्रम का नाम नॉनस्टॉप गपशप। और हमारे दोस्त शायद आ चुके हैं, तो आइए चलिए देखते हैं कोई हम तक पहुँचा है, उनका क्या कहना है आज के इस खास के दिन के बारे में। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? पहले अपना नाम परिचय दीजिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो क्या कर रहे हैं, आज का दिन कैसे मना रहे हैं? शुद्ध गान भालो होच्छे कोर्चेन की आज की सारा दिन। अच्छा अच्छा, तो और घर में आज वो रान्ना पूजा हुआ है कि
1: नहीं?
0: अच्छा अच्छा, अच्छा चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप हमारे गानों को सुनिए और यूं ही हमारे प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए। ये हमारे साथ आए थे, शायद ये नेत्रहीन है, लेकिन चलिए, कहते हैं ना कि ये दिव्यांग हैं, इन्हें कोई ना कोई एक्स्ट्रा पावर ज़रूर मिली हुई है ईश्वर की दया से, ईश्वर की अनुकंपा से। तो ये हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं और रान्ना पूजा भी आज हो रहा है, घर में लोगों के घरों में आज के दिन, खास करके बंगाल के जो लोग हैं उनके घर में ये नियम होता है कि एक दिन के लिए चूल्हे को आराम दिया जाता है, और ये पता चलता है, इससे ये ज्ञात होता है कि चूल्हा हमारी ज़िंदगी में कितना अहम है। अगर एक दिन घर का चूल्हा बंद हो जाए तो लोगों में क्या होती है, परिवार में क्या होता है, उसके लिए ये पूजा भी की जाती है। और इस पूजा का प्रक्रिया कुछ ऐसा है कि पूरी रात घर की जो महिलाएँ हैं वो खाना बनाती हैं, तरह तरह के पकवान बनाती हैं, और जो चावल है उसको फर्मेंटेशन किया जाता है। चावल को पानी में डाल के उसका फर्मेंटेशन होता है, और सुबह जो सामने आता है, जो आपके थाल में दिखता है, खास करके ये केले के पत्तों में परोसा जाता है, प्रसाद के रूप में आया जाता है। और कई लोगों के घर में काफ़ी भीड़ होती है, लोगों को खिलाया जाता है प्रसाद के रूप में, तो वो जो पांता भात, खास करके पांता भात और कोचू शाक का एक ख़ास बात ये है कि कोचू शाक पेट को ठंडा रखता है, और इसलिए भले और कुछ बने, साथ में और भी बहुत कुछ मिलता है, परवल, भिंडी, बरबट्टी, ये सारे, मतलब तमाम जो बाज़ार में जो सब्जियां मिलती हैं उसको आप देखेंगे, आपके प्रसाद का जो थाल है, जो पत्तल है, उसके ऊपर सजा हुआ मिलता है। तो ये भी बड़ा एक्साइटिंग एक त्यौहार है, और हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं किसी न किसी के घर में। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे मेरे तो कई इनविटेशंस आते हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ, तो ये सिर्फ मेरे ही साथ नहीं, कईयों के साथ होता है, और इसका एक अलग ही मज़ा है। मतलब किसी के घर में आप प्रसाद लेने जा रहे हैं और पीछे से माइक बज रहा है, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा भी है, तो इट्स ए डुअल फेस्टिवल, डुअल सेलिब्रेशन जो हम साथ मिलाते हैं, जो हम साथ मनाते हैं, और लोगों में एक जो समृद्धि होने की जो भावना है। लेकिन हाँ, इस पूजा की वजह से एक चीज़ थोड़ा सा मिसमैनेज हो जाता है कि अगर मान लीजिए आपके घर का जो सैनिटरी लाइन में कोई प्रॉब्लम हो, अगर पानी का जो लाइन है उसमें कोई प्रॉब्लम हो, या घर में कोई भी आपका जो इंटरनेट है वो काम नहीं कर रहा है, तो आज का दिन बड़ा मुश्किल है भाई, क्योंकि आज सारे औजारों को तिलक लगा के पूजा किया जाता है और एक दिन के लिए उन्हें भी आराम दिया जाता है। तो अगर आज घर में कुछ प्रॉब्लम है तो यस, यू हैव टू बेयर विथ पेशेंस, और एक दो दिन का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। भाई क्या करें, ज़िंदगी ऐसी है, और भाई विश्वकर्मा जी की मेहर है जो पूरे साल सब कुछ इतना अच्छी तरह से चलता है। तो चलिए, बातों को थोड़ा सा कम करते हुए आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत के साथ, क्योंकि आप सुन रहे हैं म्यूजिकल प्रोग्राम 107 एफएम रेनबो, जिसका नाम है नॉनस्टॉप गपशप पॉपी के साथ, ओनली ऑन 107। फिलहाल द नेक्स्ट ट्रैक इज आहू आहू।

मतलब आजकल से आपने सुना ये खूबसूरत गीत, लेकिन इस बीच में एक बात तो बताना भूल ही गई, कैसे भूल सकती हूँ भाई, अभिषेक ने सबसे तेज T20 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन गए, यानी कि एक और रिकॉर्ड भारत के नाम आ चुका है। आपको बताएं कि भारत ने तीसरे T20 में अफगानिस्तान को 222 रन का टारगेट दिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अभिषेक शर्मा सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बने और उन्होंने केवल 30 गेंद पर सेंचुरी जमा दी। जी हाँ, वो कहते हैं ना, जहाँ पे वेयर देयर इज अ विश देयर इज अ वे, चाहे तो राह है। वैसे आपको बताऊं कि अभिषेक ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। रोहित ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ इंदौर में 35 बॉल में शतक लगाया था। जी हाँ, 35 बॉल में, लेकिन इन्होंने 30 में ही काम तमाम किया। आज भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 221 रन बनाए और अभिषेक ने 34 गेंद पर 108 रन की पारी खेली। साथ ही आपको बताएं कि संजू सैमसन ने 35 गेंद पर 50 रन बनाए और दोनों ने पहले विकेट के लिए 59 गेंद पर 142 रन जोड़े। अफगानिस्तान के लिए अजमतुल्लाह उमर जई ने

दो विकेट लिए, राशिद खान को एक विकेट मिला और भारत से चार प्लेयर रन आउट हुए। हालांकि जो खास बात है, जो मोस्ट अट्रैक्टिव, जो कैची न्यूज़ है कि 30 बॉल पर सेंचुरी बन गया, भारत का एक और रिकॉर्ड हमारे सामने हम देख सकते हैं। आजकल ना, मतलब वो कहते हैं ना, एक फेज होता है, एक समय होता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा होता जाता है। और ऐसे ही एक और अच्छाई के बारे में बात करूँ, खास करके जब बात महिलाओं की होती है। मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था ना कि जो आज का जो दिन है वो एक इक्वल डे पे के रूप में मनाया जाता है, जहां पे महिलाओं को और पुरुषों को एक समझा जाता है और बराबरी से देखा जाता है। और वहां पे जो कि पहले जमाने में हुआ करता था कि उन्हें कम पे दिया जाता था, हालांकि एक ही काम कर रहे हैं। अब सोचिए, एक जो बैल है वो हल चला रहा है, दो बैल साथ साथ हैं, एक को कम मिल रहा है और एक को ज़्यादा मिल रहा है, तो तकलीफ तो होती है। लेकिन ये जो तकलीफ़ है वो ख़त्म है, वो अंत में है, वो क्योंकि ये नियम बन चुका है कि इक्वल पे हर किसी को मिलना चाहिए, लिंग के भेदभाव से नहीं, और ये एक होना चाहिए, चाहिए वो महिला हो या पुरुष हो। ये तो मैंने आपको बताया, साथ ही आपको बताया कि महिलाओं को बहुत बड़ी सौगात देने का एक बार फिर से ऐलान हुआ है अन्नपूर्णा दिवस के मौके पर। जी हां, 17 सितंबर को अन्नपूर्णा दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है और ये अब से हर साल मनाया जाएगा, ये पहली बार नहीं है। और पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले घर कि जो जो मिल जो घर मिलेंगे उसकी जो मालकिन होंगी वो महिलाएं ही होंगी, यानी कि जो नाम होगा वो महिलाओं का ही होगा। इस सरकार ने राज्य की हर बेटी हर महिला की रक्षा करने का संकल्प लिया है और ये हो के रहेगा। हर साल 17 सितंबर को अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मनाया जाएगा और राज्य में 50 लाख से अधिक नए घर बनाने के लिए जो सूची है वो तैयार हो चुकी है और उन घरों का स्वामित्व, यानी कि परिवार का जो कहते हैं ना, जो एवरीथिंग ऑल इन ऑल, वो केवल और केवल महिलाओं के नाम पर ही किया जाएगा। और इसके साथ और भी कई योजनाएं हैं जो महिलाओं के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे कि विधवा भत्ता, बेटियों की पढ़ाई और ICDC और आशा कर्मियों के जो वेतन समेत कई विषयों पर घोषणा कर दी गई हैं। साथ ही आपको बताएं कि अगस्त महीने से, मतलब जो अगस्त जा चुका है, अगस्त महीने से ICDC और आशा कर्मियों के जो वेतन है उसमें भी 5,000 रुपये की वृद्धि हुई है। तो यू नो, एवरीथिंग इज़ गुड और मुझे अच्छा लगता है कि मैं सुबह सुबह आके आपको अच्छे अच्छे न्यूज़ से रूबरू करवाती हूँ, अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ, ज़िंदगी को पॉजिटिव बनाती हूँ और खूबसूरत बनाती हूँ। ये मेरा हमेशा से कोशिश रहा है। तो इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा म्यूज़िक भी सुनते हैं, क्योंकि दिस इज़ नॉन स्टॉप गपशप एंड हियर कम्स द नेक्स्ट म्यूज़िक बाय नूरा सिस्टर्स। तो चलिए, अगला गीत फिल्म

आज के दिन। आज के दिन के बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन अगर इतिहास को जरा देखें तो कुछ चीजें हैं जो हुई थी आज के दिन। तो सन 1803 में ब्रिटिश ने पूरी जगन्नाथ धाम पर आज ही के दिन कब्जा किया था। वहीं आज ही के दिन अगर थोड़ा

और पीछे जाएं तो सन 1615 में थॉमस रो वो पहले अंग्रेज राजदूत थे जो जहांगीर के दरबार में अजमेर में आए थे आज ही के दिन। सन 1948 में आज ही के दिन ऑपरेशन पोलो खत्म हुआ था और सरदार पटेल की योजना से इंडियन आर्मी ने हैदराबाद को निजाम से आजाद करवाया और भारत में मिलाया था, इसलिए हैदराबाद का भारत में विलय दिवस हुआ था आज ही के दिन। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री देखें तो सन 1810 में चिली ने अपने आप को स्पेन से आजाद किया था। ये थी आज के दिन की खास बात। और मेन चीज तो मैंने अभी बताया ही नहीं आपको, बताऊं कि आज एक नहीं बल्कि 3-3 इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। एक तो मैंने काफी डिटेल्स में आपको बताया कि इंटरनेशनल इक्वल पे डे अर्थात समान मेहनत समान वेतन आज ही के दिन मनाया जाता है। वहीं साथ ही साथ आज के दिन वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे यानी कि अपने आसपास के पानी की जांच करो, जी हाँ वो मनाया जाता है। और साथ ही यानी कि आपके आसपास में जो भी तालाब हैं कुआं हैं उसके स्तर को उसके जल स्तर को उसके पानी के क्वालिटी को उसको देखा जाता है, इसलिए आज के दिन को वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे भी कहा जाता है। और साथ ही मनाया जाता है वर्ल्ड बैम्बू डे। जी हाँ बैम्बू जो कि कहा जाता है कि सबसे गरीबों का गोल्ड कहा जाता है, बांस को ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं क्योंकि ये हर चीज़ में मतलब छोटे से छोटे चीज़ों में इसकी आवश्यकता होती है और इसका जो फैलाव है इसकी जो फसल है वो बहुत जल्दी से बढ़ती है और उगती है। और वैसे भी आप देखेंगे कि आपके घर में छोटी छोटी चीज़ों में इसकी ज़रूरत होती है। कभी कभी अगर किसी बिल्डिंग का रेनोवेशन होता है तो बांस को ही बांध कर उसकी ऊंचाई को पहुंचा जाता है। तो बांस मतलब बैम्बू जो है वो हमारे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा आधार है, खास करके गरीबों के लिए ये बहुत आवश्यक है। तो आज वर्ल्ड बैम्बू डे भी मनाया जा रहा है। तो ये थी आज के दिन की खासियत। मौसम के बारे में आपको बता दें कि आज हल्की फुल्की बारिश तो होगी ही लेकिन हाँ गरज के साथ छींटे भी कहीं कहीं होने की संभावना है। तापमान 33 डिग्री और 30 डिग्री के आसपास रहेगी। तो ये थी मौसम के बारे में जानकारी, ये भी मैंने आपको दे दिया है। और अब है नुस्खे का सेगमेंट, वो भी सुनाएंगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले आइए एक गीत सुनाते हैं।

एक चुटकी नुस्खे। नुस्खे के सेगमेंट में आज हम आपको बताएंगे कि बरसात में अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का रख रखाव कैसे करें। जी हाँ, कोलकाता और कोलकाता के आसपास के इलाकों में बरसात में हवा में 80-90% नमी रहती है और इससे गैजेट्स में जंग, फंगस और शॉर्ट सर्किट होने की पूरी तरह से संभावना है। तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना ये है कि टीवी के पीछे, जी हाँ, टीवी के पीछे या आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं, माइक्रोवेवन है, फ्रिज है, उसके पीछे 2-3 सिलिका जेल का पैकेट रख दीजिए। और ये बहुत ही सस्ता ब्रह्मास्त्र है जो आपको बहुत ही काम में आएगा। और जूते के डब्बे में भी कभी कभी आपको कहीं बहुत सी जगह पे मिल जाती हैं ये चीज़ें, तो इसे आप फेंके नहीं, इसे वहाँ रख दें जहाँ आपके इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं। साथ ही टीवी, कंप्यूटर, प्रिंटर को जब भी आप यूज़ नहीं करते हैं तो उसे कॉटन के कपड़े से ढकें, कभी भी प्लास्टिक से बिल्कुल ना ढकें, क्योंकि प्लास्टिक अपने अंदर मॉइस्चर को और भी फ्रीज करता रहता है, इससे आपके गैजेट्स पे असर पड़ेगा। और एक ख़ास बात, चाहे ज़रूरत ना भी हो तो भी टीवी, स्पीकर, लैपटॉप कम से कम 10 मिनट के लिए हर रोज़ उसको ऑन करके रखें, क्योंकि अंदर की गर्मी नमी को भगाती है जैसे चूल्हा गीले लकड़ी को सुखाती है। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि बरसात में बिजली का जो वोल्टेज है वो ऊपर नीचे होने की पूरी तरह से संभावना होती है, तो आकाश में बिजली के कड़कने से फ्रिज, टीवी, एसी बिना स्टेबलाइजर के कभी भी आप मत चलाएं। और साथ ही साथ आपके घर का जो अर्थिंग है उसको हमेशा ठीक करवा के रखें, क्योंकि अगर अर्थिंग ठीक नहीं होगा तो आपके जितने भी गैजेट्स हैं उसमें आपको करंट दिख सकता है और आप वो करंट फ्लो आपके बॉडी से होगी और वो क्या होता है कि कभी कभी आप उसको पकड़ते हैं तो झटके मारते हैं। तो फॉर दिस आपके घर का जो अर्थिंग है उसको ठीक तरह से आपको करवाना पड़ेगा। और तेज आंधी तूफान आए तो मेन स्विच से टीवी, राउटर का प्लग, ये सारा का सारा आप निकाल दें, एक झटके में मदरबोर्ड वरना जल जाता है। तो ये थी कुछ नुस्खे, और फिलहाल इन नुस्खों के साथ पॉपी को दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी आपके साथ 11:10 पर लेकर कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद, लेकिन 100.1 FM गोल्ड पर। तब तक के लिए नमस्कार।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: ये जो फेस्टिव माहौल है ना, इसमें चार चांद लगाने या यूं कहिए कि तड़का लगाने हम आ जाते हैं जब जब आपको हमारी याद आती है तब तब। और ये याद आपको कब आती है? रोज ही आती है। लेकिन ये त्योहारों का जो सीजन एक बार चल पड़ा है ना, ये रुकने वाला नहीं है, और ना ही हम रुकने वाले हैं। लेकर आएंगे आपके लिए इसी तरह से एक के बाद एक खूबसूरत कार्यक्रम ओनली ऑन FM रेनबो कोलकाता। फिलहाल तीन का तड़का लेकर चैनिका हाजिर है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। और क्योंकि आज है विश्वकर्मा पूजा, तो ये फेस्टिव सीजन की जो वाइब है ना, ये आपको समझ आ रही होगी। आप बस देखिए, सड़क पर निकलिए, हर तरफ लाउडस्पीकर, और हर लाउडस्पीकर पर बजता हुआ एक दूसरा गाना, अन्य गाना, अलग अलग मोड़ पर से घूमते हुए पैदल या आपके दुपहिए चार पहिए पर आप अलग अलग गीतों का मजा ले सकते हैं। लगेगा कि आप जैसे अलग रेडियो स्टेशंस के बीच में आना जाना कर रहे हैं, लेकिन वो वाली फील अभी फिलहाल मेरे साथ आपको नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग रहेंगे मेरे साथ फिलहाल FM रेनबो पर, जहां पर सिनेमा की बातें, फिल्मी खबरें आपके लिए लेकर आए चैनिका। फिलहाल घड़ी में समय 3:07:29, एकदम सही समय घड़ी मिला लीजिए। वैसे भी आपको आज समय का होश तो है नहीं, फिर भी घड़ी मिला लीजिए। अच्छा, अब पहली खबर जो है वो मैं आपको ये देना चाहूंगी। ये फेस्टिव सीजन से ही जुड़ी है खबर, लेकिन उसमें एक अलग एंगल है। वो ये कि रणवीर सिंह ने सेवा संकल्प अभियान के तहत 1000 अंडर प्रिविलेज्ड बच्चियों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया है, और ये उनकी ये जो प्लेज है, उन्होंने ये जो जिम्मेदारी ली है, इसके बारे में उन्होंने खुद अनाउंस किया है गणेश चतुर्थी के मौके पर। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उन्होंने ये अनाउंसमेंट की, और वो मुंबई के लालबागचा राजा में

पहुंचे थे दर्शन करने गणपति बाप्पा के, वहां पर उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया। वैसे ये अपने आप में ना एक बहुत बड़ी बात की कहते हैं ना कि आपके साथ अगर बहुत अधिक पावर है, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये बात अगर जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, बहुत नामचीन लोग हैं, वो सब अगर समझ जाएं और इस तरह से दूसरों को रास्ता दिखाएं, तो ये हमारी जो दुनिया है ये कितनी सुंदर हो सकती है। फिलहाल तो आप सबके लिए एक सुंदर सा गाना मैं यहाँ पर जरूर ही प्ले कर सकती हूँ। और इस तरह से समाज के प्रति हमारे चारों तरफ जितने भी लोग रहते हैं हमारे आसपास, सब तो हमारे प्रियजन ही हैं, है ना। तो ये फेस्टिव सीजन हो या फिर कोई और आम दिन, अगर किसी और के लिए कुछ करने का मौका मिलता है या वो मौका हम खुद ढूंढ लेते हैं, तो इससे खूबसूरत बात और कुछ हो ही नहीं सकती। आप सबके लिए फायर क्रैकर।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर। रेनबो पर। परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति, सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आइए आज आपको राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के तहत वृद्ध और जरूरतमंद कारीगरों के लिए वित्तीय सहायता योजना के बारे में बताते हैं। यह योजना कारीगरों को उनके बुढ़ापे के दौरान सहायता करने के लिए शुरू की गई है। योजना का उद्देश्य क्या है? भारत सरकार का कपड़ा मंत्रालय वृद्ध और गरीब परिस्थितियों में जीवन बिता रहे कारीगरों को आर्थिक मदद देता है। इसके तहत कारीगरों को 8,000 रुपए प्रति माह तक की वित्तीय सहायता मासिक भत्ते के तौर पर या एकमुश्त अनुदान के तौर पर दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में यानी DBT या PFMS में भेजी जाती है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि आवेदन कौन कर सकते हैं? उम्र जो है आवेदन करने वाली की, वो कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए, यानी आवेदन के समय कारीगर की उम्र 60 वर्ष की मिनिमम होनी चाहिए और दिव्यांग कारीगरों को उम्र में छूट मिल सकती है। इसके अलावा आवेदक को शिल्प गुरु, राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य पुरस्कार या अन्य कोई बड़ा पुरस्कार मिला होना चाहिए। और अगर हम आय की बात करें तो पिछले साल की कुल पारिवारिक आय 1,00,000 से कम होनी चाहिए। आवेदक को किसी अन्य सरकारी स्रोत से ऐसी ही वित्तीय सहायता न मिल रही हो, ये भी एक पॉइंट है पात्रता का। अच्छा, आवेदन कैसी करनी है? ऑफलाइन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो आप समाचार पत्रों या विज्ञापन में जानकारी आने पर निर्धारित आवेदन पत्र या एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल लें और उसके बाद इस फॉर्म को भरें। आवेदन पत्र में सभी जरूरी जानकारी आप भरेंगे, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगाएंगे और मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड प्रतियां जरूर जोड़ेंगे। इसके बाद भरा हुआ फॉर्म जो है वो अपने नजदीकी हस्तशिल्प सेवा केंद्र या क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करना है। फॉर्म जमा करने पर आपको एक रसीद या यूनिक नंबर मिलेगा जिसे भविष्य के लिए संभाल कर रखना है। अच्छा, आवेदन तो जमा कर दिया, अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो क्षेत्र अधिकारी हैं या फील्ड ऑफिसर हैं आपके आवेदन और साथ ही दस्तावेजों की जांच करेंगे। सही पाए गए आवेदनों को 30 दिनों के भीतर आगे भेजा जाएगा। विकास आयुक्त हस्तशिल्प की समिति पात्र कारीगरों का चयन करेगी और चयन होने के बाद वित्तीय सहायता सीधे संबंधित कार्यालय के माध्यम से कारीगर को दी जाएगी। तो प्यारे श्रोताओं, आज परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत हमने जाना राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के तहत वृद्ध और जरूरतमंद कारीगरों के लिए वित्तीय सहायता योजना के बारे में। आप सुन रहे हैं FM रेनबो कोलकाता। 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति, सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: अच्छा, कुछ एक ऐसे अभिनेता होते हैं ना जिनको स्क्रीन पर देखते ही आपकी ना बस टकटकी बन जाए। ऐसी स्क्रीन प्रेजेंस होती है भाई साहब कि क्या ही कहें। ऐसे ही एक अभिनेता हैं जो हैं तो वैसे साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार, लेकिन हिंदी फिल्में भी अभी ऐसी, मतलब ऐसी कहते हैं ना छुट्टे, वो छुट्टे टाइप्स की हिंदी फिल्में वो कर रहे हैं, इक्की दुक्की फिल्में। और नाम है उनका विजय सेतुपति। पता है आपको एक बहुत बड़ी बात हुई है, वो ये कि विजय सेतुपति की फिल्म महाराजा अगर आपने देखी है तो आप इस फिल्म का लोहा ज़रूर मानते होंगे। 2024 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, क्रिटिकली एक्लेम्ड एक नियो नॉयर एक्शन थ्रिलर फिल्म, तमिल एक फिल्म। इस फिल्म में विजय सेतुपति नज़र आए थे। और आपको बताऊँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि उनके करियर की ये 50वीं फिल्म रही। और नितिलन स्वामीनाथन ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। तो मैं आपको बताऊं कि ऑफिशियली ये फिल्म जो है ये एक हॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार है। पहली तमिल फिल्म होगी ये जो हॉलीवुड में रीमेक की जाएगी, बहुत बड़ी बात था। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि मैथ्यू मैकोनी वो इस फिल्म में लीड किरदार निभा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी ये खबर, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हम वेस्ट की जो फिल्में हैं, जो प्लॉट्स हैं, वो यहाँ हिंदी फिल्मों में या किसी और भाषा में रीमेक करते हैं उसका। लेकिन ये जब हो जाए कि अपनी ओरिजिनल चीज़ कहीं और दोबारा बनाई जाए, तो भाई ये तो कहते ना कि बहुत बड़ी बात है। अपने आप में एक निर्देशक अभिनेता को कितना बड़ा क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा इस खबर से। लेकिन एक और मज़े की बात यहाँ पर जोड़ना चाहूँगी, जोड़ के दूसरे गाने पर जाऊँगी, वो ये कि आमिर खान ने जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तब उन्होंने उसी वक्त जो है फिल्म की राइट्स खरीद ली थी। और हिंदी में ये फिल्म जब बनेगी, ज़रूर बनेगी जब आमिर ने राइट्स खरीदी हैं, तो विजय सेतुपति का जो किरदार है महाराजा में वो हिंदी फिल्म में आमिर निभाएंगे। बाबा जी कितने काम की बातें बताती हूँ मैं तीन का तड़का में, है नहीं? आप कहाँ जाएंगे मुझे छोड़कर, कहीं मत जाइए। फिलहाल आप सबके लिए एक खूबसूरत सा गीत जोनिता गांधी की आवाज़ में, सुनते रहें, साथ रहें। दंगल फिल्म का ये गाना है।

अच्छा, कुछ दिनों पहले फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने कहा है कि बदलाव तो कुदरत का नियम है और हर समय कुछ न कुछ बदलते रहता है। वो उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि आजकल की जो ऑडियंस है वो थोड़ी स्मार्ट हो गई है और ऐसी फिल्में हिट हो रही हैं। इस साल का ये एकदम आप आंकड़े देख लो भाई साहब, इतनी फिल्में हिट हो गई जहां पर कोई भी नामचीन अदाकार नहीं था, जिसमें अभी तो लेटेस्ट जो फिल्म मैं आपको बताऊं वो हनुमान अंश है और मिर्जापुर है। इसके अलावा भी हॉन्टेड 3D इकोस ऑफ द पास्ट, कृष्णा अवतारम पार्ट 1, ये सब हिट हो गई। मैं वापस आऊंगा हिट हो गई। कहाँ कौन से बहुत बड़े सुपरस्टार्स थे, नसीरुद्दीन शाह जैसे कमाल के मझुए कलाकार जरूर थे, लेकिन जो हम कहते हैं ना वो स्टार पावर इन फिल्मों के पीछे नहीं था, लेकिन फिल्में बहुत अच्छी थी इसलिए चली। और उधर अल्फा टॉक्सिक, हैवान, ओ रोमियो, धमाल 4 और कॉकटेल 2 के बारे में मैं कुछ ना कहूँ तो ही बेहतर होगा। तो इसी बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग से मोड़ पर मैं कार्यक्रम को रैप अप करूंगी। हम लोग 3:30 बजे चली जाएंगे एक विशेष कार्यक्रम की ओर, विज्ञापनदाता द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनेंगे हम। तो फिलहाल चैनिका को आप 3 का तड़का से इजाजत दें, और मिर्जापुर का जिक्र हुआ है तो चलते चलते सुनते हैं गाना घनश्याम वासवानी की आवाज में, इसी फिल्म से या इसी सीरीज से, आप जो भी कहें भाई, असर जो है वो एक सा ही है। सुनते रहे, साथ रहे FM रेनबो कोलकाता।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। तो करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक खूबसूरत विचार से, जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी ने। लिखते हैं, ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक सच्चा व्यवहार और प्रेम ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। आप सबका आभार संदेश भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी। गांव डांगरी जिला जैसलमेर से बाबूराम जयपाल। ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी, सादर नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व जो गीत कार्यक्रमों में जवानों उठो, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के जीवन पर प्रकाश डाला, वो बेहद सराहनीय और प्रशंसनीय लगा। सबसे बढ़िया मुझे देशभक्ति गीत लगे। आप सबके उम्दा संदेशों के लिए एक बार फिर से मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है, इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया भर की उन मजेदार लेकिन साथ ही साथ गंभीर परंपराओं के बारे में रोचक जानकारियां। तो श्रोता मित्रों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अजब गजब परंपराओं की। अब तक हमने बात की उन जंगलों की जहाँ लोगों को संदेश दिया जाता है कि जंगल मत काटो, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे जंगल की जिसे काटना तो दूर कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। पिछले दो दिनों में हमने जापान और रूस का भ्रमण किया, आइए अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के मेघालय में। वहाँ की खासी जनजाति एक अद्भुत पर्यावरण से जुड़ी परंपरा का पालन करती है। वहाँ के कुछ विशेष जंगलों को लाव किंगटांग कहते हैं। खासी भाषा में लाव यानी वन और किंगटांग यानी पवित्र होता है, यानी पवित्र वन या जंगल। इसे लेकर एक सुंदर लोक कथा है जो अलग अलग प्रकार से सुनाई जाती है। बहुत पहले की बात है, एक गाँव के किनारे घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, जंगली फूल, पक्षियों की आवाजें और बीच से बहती छोटी सी जलधारा। गांव के बच्चे उस जंगल को देखकर कहते, ये हमारा जंगल है। लेकिन गांव के बुजुर्ग उन्हें रोक कर कहते, नहीं, ये हमारा जंगल नहीं है, हम तो बस इसके रखवाले हैं। गांव के मुखिया और बुजुर्ग सबको यही समझाते, जंगल हमारा नहीं है, ये प्रकृति का वो वरदान है जिसकी रक्षा के लिए हमें नियुक्त किया गया है। लोक कथा

0: रहती है। एक दिन गांव में एक व्यक्ति को लकड़ी की जरूरत पड़ी। उसने सोचा, जंगल इतना बड़ा है, अगर एक पेड़ काट भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुंचा। जैसे ही उसने पेड़ पर पहला प्रहार करने के लिए हाथ उठाया, उसे बुजुर्ग की बात याद आई, कुछ लेने से पहले इस जंगल से जरूर पूछना, क्योंकि ये जंगल तुम्हारा नहीं है। उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी। जितने भी लोग जंगल में पेड़ काटने आते, यदि उन्हें अपने बुजुर्गों की बात याद आ जाती तो वे भी अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़ जाते। समय बीतता गया। एक पीढ़ी गई, दूसरी आई, फिर तीसरी। लोगों ने घर बनाए, खेती की, बाजार बनाए, लेकिन उस पवित्र जंगल को वैसा ही रहने दिया। न कोई पेड़ काटता, न शिकार करता, न वहां से लकड़ी उठाता, और जंगल वो हर वर्ष और घना होता चला गया। उसकी जड़ें मिट्टी को थामे रहीं। उसकी जड़ों ने और वनस्पतियों ने जल स्रोतों को संभाला। पक्षियों और छोटे जीवों को आश्रय मिला। लोग कहते, इस गांव में सबसे ज्यादा हरियाली है। श्रोताओं, ध्यान से सुनिए, जब हम कहते हैं पेड़ लगाइए, जंगल बचाइए, जल बचाइए, तो खासी समुदाय की ये पुरानी परंपरा हमें एक और गहरी बात सिखाती है। वो ये कि प्रकृति की रक्षा केवल नियम बनाकर नहीं, उसके प्रति सम्मान पैदा करके भी की जा सकती है, क्योंकि नियमों से जो काम नहीं होते वे सम्मान देकर आसानी से किए जा सकते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, लोक कथा बताती है कि वहां एक जंगल को बचाने के लिए हजारों पहरेदारों या वन रक्षकों की जरूरत नहीं पड़ी। बस एक विचार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, हम जंगल के मालिक नहीं, रखवाले हैं। और शायद आज हमारी धरती को इसी विचार की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो खासी समुदाय के पुराने लोगों ने दिया है। और वो विचार है, ये जंगल हमारा नहीं है, हम जंगल के रखवाले हैं। तो श्रोताओं, आप तो सुविचार भेजते ही रहते हैं। आज सुनिए उमंग कार्यक्रम की ओर से ये सुविचार। आज अगर हम परिवार और आसपास के एक पेड़ को सिर्फ पेड़ न मानकर परिवार का सदस्य मान लें, तो दुनिया और ज्यादा खुशहाल बन जाएगी। अगर ये विचार आज हम धारण कर लें, तो शायद हमारी धरती थोड़ी और हरी हो जाए। शायद आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद दें कि हमने उन्हें केवल इमारतें नहीं, एक जीवित धरती भी विरासत में दी है। तो श्रोता मित्रों, कैसी लगी जानकारी पवित्र वन की, जरूर लिखकर बताइएगा। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, आज का प्रश्न है, खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है। आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CITNCERT को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल YouTube को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है शेर और चूहे की दोस्ती। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि कभी भी किसी को तुच्छ, निकृष्ट और छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी किसी के काम आ सकता है।
1: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना, एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा, ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए।
4: शेर और चूहे की दोस्ती, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब सुनिए अबला को सबला बनाने वाली अबला। ये कार्यक्रम सुप्रसिद्ध भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस की पत्नी श्रीमती अबला बोस के जीवन और नारी उत्थान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताता है।
0: इतिहास में बहुत सारी नायिकाएं ऐसी भी हैं जिन्हें शायद बहुत अधिक स्मरण नहीं किया जाता, जिनका नाम दुनिया के प्रसिद्ध लोगों की सूची में नहीं मिलता, उनकी सराहना में प्रशस्ति गान नहीं लिखे गए और न ही उन्होंने अखबारों की सुर्खियां बटोरी, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया उसकी मिसाल दुर्लभ है।
5: जनस्मृति से भले ही वे नाम धूमिल और विस्मृत हो जाएं, लेकिन इतिहास उन्हें आदर सहित याद रखता है और कभी ना कभी उन्हें आभार सहित प्रकट अवश्य कर देता है। ऐसा ही एक नाम है अबला बोस का।

0: 19वीं सदी का अविभाजित भारत, देश में बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार, दहेज जैसी कई स्त्री विरोधी कुप्रथाएं थीं, जिन्हें चाहकर भी समाप्त नहीं किया जा सका था। ऐसे समय में प्रादुर्भाव हुआ बंगाल की महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, संघर्षशील और नारी अधिकारवादी विदुषी अबला बोस का।
1: उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने का बीड़ा उठाया, लेकिन कौन थी अबला बोस? बता दें, वे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस की पत्नी थीं। जगदीश चंद्र बोस पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिकी और जीव भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया।
0: कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। यदि कहा जाए कि महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की सफलता के पीछे भी उनकी पत्नी अबला बोस का हाथ था, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अबला बोस का जन्म 8 अगस्त 1865 को बरिशाल में हुआ था। बरिशाल तब अविभाजित भारत का हिस्सा था और अब ये बांग्लादेश में है।
1: अबला के पिता दुर्गा मोहन दास ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध नेता और समाज सुधारक थे। अबला की मां ब्रह्ममयी परित्यक्त, विधवा और घरेलू हिंसा के शिकार स्त्रियों के उत्थान के लिए काम किया करती थी। एक दिन की बात है, अबला की मां ब्रह्ममयी किसी मोहल्ले में रहने वाली मजदूर स्त्रियों का हाल चाल पूछने गई थी। उनके साथ अबला भी थी।
2: ए, पानी ले आ रहा
3: है?
1: कल रात तो फिर भी कर आ गया।
4: क्या बताऊं दीदी, रोज का यही है। हम औरतों की तो हालत बहुत बुरी है दीदी।
1: न कमाता है, न धमाता है, ऊपर से रोज जमाता है।
4: दीदी,
1: अरे इनको तो
4: दीदी।
5: अरे आलोका, तुम सब ठीक तो है ना?
4: नहीं दीदी, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है।
5: अरे?
4: जिस दिन आप परिवार वालों को समझाने आई थी,
5: हाँ हाँ,
4: उसके बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन अब फिर।
5: अब फिर क्या?
4: मुझको कहते हैं तू अपने आदमी को खा गई, हमारे साथ नहीं रह सकती, कहीं और अपना इंतजाम कर ले। कल रात मुझे घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊं दीदी, मायके में भी कोई स्वीकार नहीं करेगा।
5: रो मत आलोका, आज तुम नारी रात्रि पाठशाला में ही रुक जाओ, मैं सारी महिलाओं के साथ तुम्हारे घर जाऊंगी। बहनों, कल सभी तैयार रहें।
6: जी दीदी।
5: हम सब आलोका के घर चलेंगे।
6: बिल्कुल चलेंगे।
5: आज इसके साथ हो रहा है, कल किसी के भी साथ हो सकता है।
6: जी दीदी।
4: जी दीदी,
6: हम सब तैयार हैं।
0: उन दिनों स्वामी विवेकानंद ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सिस्टर निवेदिता जैसे प्रगतिशील विचारों के प्रभावशाली लोगों के कारण समाज में परिवर्तन आ रहा था। इस कारण ब्रह्ममयी दीदी के नेतृत्व में आलोका जैसी अनेक स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा हो सकी।
1: बालिका अबला ने ऐसी बहुत सी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था। वो ऐसे वातावरण और परिवार में पली जहां नारी उत्थान के लिए काम किया जाता था, नारियों को सशक्त, स्वावलंबी और शिक्षित बनाने पर जोर दिया जाता था।
0: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना हुई। वे मात्र 10 वर्ष की थीं कि तभी उनकी माता का देहांत हो गया। लेकिन अबला के बाल मन पर उनकी माता की जो छाप पड़ी वो आजीवन उनके साथ रही।
1: प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने बंग महिला विद्यालय और फिर बैथून कॉलेज में दाखिला लिया और फिर मेडिसिन की पढ़ाई के लिए वे मद्रास चली गईं, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है।
0: लेकिन सेहत खराब होने के कारण वे बंगाल लौट आईं और कभी वापस चेन्नई नहीं गईं। वापस नहीं जाने का कारण था 23 वर्ष की आयु में उनकी सर जगदीश चंद्र बोस से शादी। ये था वर्ष 1887 का।
1: समय बदल रहा था। व्याख्यान देने और शोध कार्य के लिए उनके पति सर जगदीश

0: चंद्र बोस को अक्सर विदेश जाना होता था तो वे भी उनके साथ हुआ करती थीं।
1: एक बार की बात है, शोध के सिलसिले में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए।

0: यूरोप और अमेरिका विदेश यात्राओं के दौरान उन्होंने उन देशों की महिलाओं की सशक्त सामाजिक, आर्थिक और रहन सहन की स्थिति को ध्यान से देखा। अबला बोस ने देखा कि यहाँ स्त्रियों की दशा बहुत उन्नत है। किसी भी कार्यक्षेत्र और विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी उन्होंने देखा कि जितने पुरुष कर्मी थे लगभग उतनी ही स्त्रियां भी थी।
1: और यहीं से शुरू हुआ उनका आगे का सफर, जिसने एक गौरवशाली इतिहास रच दिया। एक और महत्वपूर्ण घटना ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। 1917 में डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को नाइटहुड की उपाधि मिली।
0: लंदन का रॉयल अल्बर्ट हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बहुत से देशों के वैज्ञानिक इस अवसर पर निमंत्रित थे।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन वेलकम्स यू ऑल एट दिस ओकेजन। We have gathered here to facilitate Dr. Jagdish Chandra Bose, the great scientist from India. Now, I request the President of Royal Society to confer knighthood to Dr. Bose. From today, he will be the esteemed Fellow of the Royal Society. Now, I request him to kindly come on the dais to receive the knighthood. And ladies and gentlemen, it is said, behind every successful man, there's a woman. So now I request the great woman, Lady Bose, his wife, to come on the dais. Give this lady a standing ovation.
0: तब से वे लेडी बोस के नाम से जानी जाने लगी। उस रात डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस अपनी पत्नी अबला बोस के साथ भोजन के बाद बातें कर रहे थे।
3: वाह, सचमुच खाना तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट था ना?
4: जी,
3: बैठो। अच्छा एक बात बताओ, आखिर बात क्या है? आज तुम थोड़ी चुप चुप सी लग रही हो।
4: नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं कुछ सोच रही थी।
3: सोच रही थी क्या?
4: मैं सोच रही थी कि यहाँ की स्त्रियाँ कितनी स्वतंत्र और सशक्त हैं। मेरे कहने का मतलब है, यहाँ समाज में उनका बराबर का स्थान है, उनका भी सम्मान उतना ही होता है जितना कि पुरुषों का होता है।
3: बिल्कुल।
4: आपने देखा नहीं, आज आपके नाइटहुड सम्मान के दौरान आपकी पत्नी होने के नाते मुझे कितना सम्मान मिला।
3: हाँ, वो तो है अबला। इसीलिए इन लोगों ने इतनी तरक्की की है।
4: वो तो है। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे अपने देश की स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए।
3: हाँ।
4: हमें उन्हें शिक्षित और स्वावलंबी बनाने की जरूरत है।
3: बिल्कुल।
4: आपको नहीं लगता?
3: लगता है अबला, बिल्कुल लगता है। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात होगी। देखो अबला, तुम जो कुछ भी कर सकती हो जरूर करो। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
4: हाँ, हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा ही हमारे देश की स्त्रियों को उनका अस्तित्व दिलाएगी।
3: सही कहा तुमने, मुझे तुम पर गर्व है अबला। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा।
4: मुझे भी तो आप पर गर्व है। आपने विज्ञान में बड़ी साधना की है और अपना आसमान ढूंढ लिया है। अब मुझे अपना आसमान ढूंढना है।
3: बिल्कुल।
4: एक ऐसा आसमान जहां हमारे देश की स्त्रियां उड़ान भर सकेंगी, इज्जत से किसी आजाद परिंदे की तरह।
3: ऐसा ही होगा अबला, बिल्कुल ऐसा ही होगा।

0: फिर क्या था, यूरोप की यात्रा से वापस आकर वे लग गईं अपने अभियान। अशिक्षा और पुरुषों पर आर्थिक और सामाजिक निर्भरता के कारण भारत में उस समय स्त्रियों की दशा दयनीय थी।
1: उन्होंने संघर्ष किया और 1919 में नारी शिक्षा समिति की स्थापना की, जिसका काम प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना, उनके लिए पाठ्य पुस्तकों को तैयार करना, मातृत्व बाल केंद्र और विधवाओं हेतु कल्याण केंद्र खोलना था। उनके द्वारा खोले गए व्यावसायिक स्कूलों में विधवा और आर्थिक रूप से कमजोर स्त्रियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और चमड़े का काम सिखाया जाता था।
0: इतना ही नहीं, अबला बोस के प्रयासों से कलकत्ता और झारग्राम में महिलाओं के उत्थान के उद्देश्य से महिला शिल्प केंद्र की स्थापना की गई।
1: अबला बोस के प्रयासों को देखते हुए बंगाल महिला शिक्षा लीग ने उन्हें अपना पहला अध्यक्ष बनाया। उनकी मेहनत रंग लाई और बंगाल में स्त्री शिक्षा के प्रति लोगों का नजरिया बदलने लगा। स्कूल जाने वाली बालिकाओं की संख्या बढ़ने लगी।
0: अबला यानी लेडी बोस को बड़ी खुशी होती जब स्त्रियां उन्हें बताती कि शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने से किस तरह उनके जीवन में खुशी आई है।
2: मेरी तो दुनिया ही बदल गई।
3: अरे दीदी, जब से बुनाई का काम सीखा है तब से घर वाला भी बड़ी इज्जत
2: है। जो बच्चे हैं ना, जब कमा के ले जाती
4: दीदी, जिंदगी इतनी खुशहाल हो गई है कि क्या ही बताऊं। जब से मैंने वो टोकरी बनानी शुरू की है, घर के कामों में भी बहुत मदद मिल जाती है।
2: देखो मेरा पर्स, ये मैंने ही बनाया है।
3: अरे अपनी बहुत खड़ी है, किसी के आगे क्यों मांगना।
4: सही बात है, हमें नहीं मांगना चाहिए किसी से। अब तो हम अपना काम कर रही है, अब हम सशक्त बन रही है।
2: बिल्कुल।
0: इस समय तक अबला बोस देश की प्रभावशाली महिलाओं के संपर्क में आ चुकी थीं, जिनमें भारत कोकिला, सरोजिनी नायडू, रमाबाई रानाडे, सिस्टर निवेदिता जैसी महिलाएं प्रमुख थीं। उन दिनों देश में महिलाओं को मताधिकार देने की बात चल रही थी। साल 1921 में भारत में पहली बार बॉम्बे और मद्रास में महिलाओं को मताधिकार मिला।
1: अबला ने बंगाल की महिलाओं के लिए आवाज उठाई और 1925 आते आते बंगाल की महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा था,
5: मताधिकार के द्वारा अब बंगाल की महिलाएं भी समानता का अनुभव कर सकेंगी, ये सुनिश्चित कर सकेंगी कि उन्हें सम्मान पूर्वक जीने के लिए किसको चुनना है।

0: सन 1937 में उनके पति श्री जगदीश चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने उनसे वादा लिया कि नारी उत्थान के कार्य को वे निरंतर करती रहेंगी। अबला ने महिलाओं के हक में काम करना जारी रखा और उनके हित के लिए अथक प्रयत्न करती रहीं।
1: अपने जीवन के अंतिम समय में वो दार्जिलिंग में बस गईं। 26 अप्रैल 1951 को इस महान महिला अधिकारवादी नेत्री लेडी अबला बोस का निधन हो गया। देश उनके अतुल्य योगदान को श्रद्धा सहित स्मरण करता है और अपना आभार प्रकट करता है।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स सुन रहे हैं आप लोग छायालोक पर सेल्यूलॉइड सुपरहिट्स। और आज हाजिर है आप सबके साथ चैने का 7 बजे से लेकर 7:02 टू बी वेरी स्पेसिफिक से लेकर रात 8 बजे तक का रहता है ये जो पहला घंटा है। इस घंटे छायालोक के साथ आपका संयोग और आज ये पहला घंटा मेरे नाम है। मैंने किया है ये कुछ ऐसी फिल्मों के नाम जो इस साल सिल्वर जुबली मना रही हैं। अच्छा, 2001 में कौन सी फिल्में रिलीज हुई थी आपको याद है क्या? मैं आपको बताऊं कि वो जो साल था ना 2001, वो हिंदी सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ था। इस साल ऑडियंस को कुछ बहुत खूबसूरत रोमांटिक फिल्में, साथ ही यादगार ड्रामा फिल्म्स, कमिंग ऑफ एज कहानियां और कल्ट का दर्जा पा लेने वाली बहुत खूबसूरत कुछ फिल्में मिली जो आज 25 साल बाद भी बहुत लोकप्रिय हैं। और चूंकि ये फिल्में 2026 में यानी इस साल अपनी रजत जयंती या सिल्वर जुबली जो भी आप कहें मना रही हैं, तो सहस्राब्दी की शुरुआत में हिंदी सिनेमा को नया आकार देने वाली इन फिल्मों को फिर से याद करने का ये समय एकदम सही समय है। तो चलिए आज थोड़ा सा नॉस्टैल होते हैं, 90 तक वापस नहीं जाएंगे क्योंकि नॉस्टैल्जिया वाला जो दौर है वो तो 90 का ही दशक है ना, लेकिन उससे थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इधर अपनी तरफ। और एकदम जब मिलेनियम की शुरुआत हुई, नया सहस्राब्द, तो उस वक्त किस तरह फिल्मों ने अपना चेहरा बदला, आज के इस पहले घंटे में छायालोक के सेल्यूलॉइड सुपरहिट्स के अंतर्गत हम जानेंगे। अच्छा, बिना समय बर्बाद किए सबसे पहली फिल्म का जिक्र मैं यहाँ करूंगी ताकि मैं गाना आपको सुनवा सकूं। तो वो फिल्म है 14 दिसंबर 2001 को रिलीज हुई फिल्म कभी खुशी कभी गम, मैग्नम ओपस फिल्म थी करण जौहर की, यश जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी ये फिल्म, मल्टी स्टारर फिल्म थी। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर मुख्य भूमिकाओं में थे। मतलब इतने, ये कहते ना चमकते सितारे एक साथ, कि एक फ्रेम में जब दो अभिनेता एक साथ आ जाएं तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि किसे देखें किसे छोड़ें। अमिताभ बच्चन और काजोल के जो साथ के दृश्य हैं वहाँ ऐसा हुआ है कि आपको लगा है कि आप किसको

छोड़कर किसे देखें। इस तरह की ये स्टार पावर वाली ये फिल्म थी और ये बॉलीवुड की सबसे चर्चित पारिवारिक ड्रामा फिल्म्स में से एक मानी जाती है आज भी। तो चलिए सुनते हैं इसका एक गाना। कार्यक्रम का इनॉग्रेशन, आज के इस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन इसी गीत के साथ, कभी खुशी कभी गम के इस सुपर हिट रोमांटिक ट्रैक के साथ करना चाहूंगी। सुनते रहें, साथ रहें।

0: सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स
1: सुन रहे हैं आप चैनिका के साथ छाया लोग ओनली ऑन एफएम रेनबो कोलकाता और सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स के अंतर्गत अब जिस दूसरी फिल्म की मैं यहां पर बात करूंगी वो रिलीज हुई थी 15 जून को उसी साल 2001 में 15 जून को रिलीज्ड इस फिल्म ने क्या बड़े बड़े तीर मारे। ऑस्कर के लिए इसे नॉमिनेशन मिला था, अकादमी पुरस्कार जाने वाली ये फिल्म, आप समझ गए होंगे कौन सी फिल्म, लगान की मैं बात कर रही हूं। आमिर खान, ग्रेसी सिंह और पॉल ब्लैकथॉर्न ने इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी और भी बहुत सारे लोग थे। एंसेंबल कास्ट एक रही इस फिल्म की। आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्देशित इस फिल्म को, जैसे कि मैंने कहा, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन हासिल हुआ था। बहुत प्रचार उन्होंने किया, बहुत कोशिश की आमिर खान ने। वैसे ही उनकी जितनी फिल्में होती हैं वो तो हैं ही परफेक्शनिस्ट और इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे, तो उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, कोशिश की कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर फिल्म को अच्छा नाम मिले, अच्छी प्रसिद्धि मिले और ये हासिल भी हुई उन्हें ये उपलब्धि। अवार्ड ना मिले लेकिन बहुत बड़े मुकाम तक ये फिल्म गई और बहुत ही कमाल की बनी ये फिल्म। एक खेल जो है वो किस तरह से आपको अलग अलग इमोशंस के साथ जोड़ सकता है, आपको मोटिवेट कर सकता है। देश प्रेम की जो भावना है वो आपकी छोटी से छोटी जो एक्टिविटी है, जो छोटा से छोटा आपका जो कदम है, वो किस तरह देश की तरफ मुड़ सकता है, इस फिल्म से हमने सीखा। लगान सच में बहुत बहुत एक स्पेशल फिल्म और 2001 की फिल्म। इस साल इस फिल्म ने भी 25 साल पूरे किए। तो चलिए सुनते हैं ये वाला गाना, वसुंधरा दास, अलका याग्निकर, उदित नारायण की आवाज में। संगीतकार हैं यार रहमान और गीतकार जावेद अख्तर।

एक जरूरी सूचना। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 28/10/2026 को अपराह्न 12:30 पर मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 7000012 में गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों के डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावों से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यूरो का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एससी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 7000012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in या फिर adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30/9/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वो इस निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332212050 या फिर 0332212612 या 0332212050 पर संपर्क किया जा सकता है। ध्यान रहे कि डाक अदालत पेंशन अदालत के आवेदनों या ईमेल पर डाक अदालत अथवा पेंशन अदालत शब्द अवश्य लिखा होना चाहिए और गौरतलब है कि डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स सुन रहे हैं आप चैनिका के साथ कार्यक्रम छायालोक सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स। और आज हम याद कर रहे हैं 25 साल पुरानी कुछ ऐसी फिल्मों की जो आज भी उतनी ही नई, उतनी ही ताज़ा हैं। और जैसे इन गीतों के माध्यम से हम जुड़ रहे हैं एक बार फिर उन फिल्मों के साथ, सच में लग रहा है आपको भी ऐसा ही ना कि अरे ये फिल्म तो रिलीज हुई लगता है कल ही की बात है, और हम जाकर देखा है सबके साथ मिलकर एकदम सुपर हिट बड़ी बड़ी फिल्में जिन्होंने उस दौर में, साल 2001 की ये फिल्में हैं, उस दौर में बड़ा नाम कमाया था। और अब अगली फिल्म जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगी वो एक ऐसी फिल्म है भैया जो अलग, एकदम अलग अंदाज में बनी। 10 अगस्त 2001 को ये रिलीज हुई थी और इस फिल्म में हमने देखा बहुत सारे लोगों को एक साथ एक बार भी। मल्टी स्टारर फिल्म थी, आमिर खान, सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, प्रीति जिंटा और डिंपल कपाड़िया इस फिल्म में हमें नजर आए। फरहान अख्तर ने अपने फिल्म निर्देशन के करियर की शुरुआत इस फिल्म के साथ की। एक्सेल एंटरटेनमेंट कहते ना कि परवान चढ़ा इस फिल्म के साथ, और ये एक यूथ को टारगेट करती हुई फिल्म थी जहाँ ड्रामा था, प्यार था, इमोशंस थे, दिल टूटने की बात थी, आप बहुत एम्बिशियस होते हैं, अपने एम्बिशंस को चेज करने की बात थी, और किस तरह से आप कितने केयरफ्री होते हैं अपनी कॉलेज लाइफ में, और धीरे धीरे किस तरह से अडल्टहुड की तरफ आप जाते हैं, उसको आप एम्ब्रेस करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, इस तरह की एक कमिंग ऑफ एज कहानी को दर्शाया फरहान अख्तर ने बड़ी बखूबी के साथ। और तीन करीबी दोस्तों की कहानी थी, हमने अलग अलग तीन तरह के दोस्त देखे जो हमारी असल ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि एक ग्रुप होता है, बड़ा ही क्लोज निट ग्रुप होता है, लेकिन जो उस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी वो एक साथ रहते हैं, एक साथ जेल कर जाते हैं इस तरह से कि उन्हें आप अलग नहीं कर सकते। कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में ऐसी क्लोज निट फ्रेंडशिप्स हम सब ने बनाई हैं, है ना। अब दिल चाहता है का जिक्र हुआ है तो फिर एक गाना तो बनता है बॉस, चलिए सुनते हैं ये गाना। ये गाना वैसे तो तीन मित्रों पर फिल्माया गया हुआ गाना नहीं है, ये सोनाली कुलकर्णी और सैफ अली खान पर पिक्चराइज था, लेकिन ये गाना मुझे अच्छा लगता है। इसकी एक पेपी सी रिदम है, वो जो एक ग्रूव है ना इस गाने में मुझे पसंद है। चलिए सुनते हैं गाना शान और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में।

ऑफ एक्सेलेंस सुपर्ब। आज के इस दौर में भी 25 साल पुराना ये गाना सुनकर आप अगर न झूमे तो मतलब भूकंप ही आ जाए, हो ही नहीं सकता कि आप न ग्रूव करें न झूमे। इतने खूबसूरत कॉम्पोजिशन, शंकर एहसान लॉय ने म्यूजिक कंपोज किया है इस फिल्म का और गीत लिखे जावेद अख्तर ने। दिल चाहता है के बाद अब मेरा दिल चाहता है कि दूसरी फिल्म पर मैं आगे बढ़ूं, रुख करूं, कार्यक्रम को मैं आगे लेकर जाऊं। लेकिन उससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना मौसम विभाग से मिली। ताजा जानकारी के अनुसार हल्की से मध्यम गरज के साथ आंधी तूफान आने के और बिजली गिरने की चेतावनी दी जा रही है। बारिश होगी, हल्की से मध्यम बारिश, साथ में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और इस तरह के जो आसार हैं ये पूर्व वर्धमान और नदिया जिलों में मतलब होने की एक संभावना जताई है और इसे हम पीली चेतावनी यानी येलो वार्निंग कह रहे हैं। मौसम विभाग ने ये ताजा जानकारी दी है। आप सब जो रहते हैं पूर्व बर्धमान या नदिया जिलों में आने वाले 2 से 3 घंटों में आप सतर्क रहें, सावधान रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। और भी कुछ अगर खबरें मिलती हैं तो आपको हम बताएंगे। और हाँ, अभी ये एक बात कहते कहते ही ये जो चेतावनी है ये पुरुलिया के लिए भी जारी की गई है, हमें पता चला है। तो पूर्व बर्धमान, नदिया और पुरुलिया जिलों के लिए आने वाले 2 से 3 घंटों में हल्की से मध्यम गरज के साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने की, बारिश होने की, तेज हवाएं चलने की संभावना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, एफएम रेनबो के साथ जुड़े रहें। और चलिए अब अपनी जो गड्डी है उसे आगे बढ़ाया जाए। और अब जिस फिल्म की मैं बात करूंगी वो भी एक मासिव फिल्म। अब आपको लगेगा कि एक साल में इतनी बड़ी बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज हो गई, मतलब ये तो चांदी ही चांदी थी। उस साल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए नोट छपे, भाई सच में धुआंधार नोट छपे, धड़ाधड़ नोट छपे, बॉक्स ऑफिस पे एकदम कहते ना बारिश हो गई पैसों की। लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में देखी, इन फिल्मों को हिट करवाया। सबसे बड़ी बात, ये फिल्में रिलीज हुई उस साल, अगर न चलती तो सारी की सारी फिल्में चली, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज हुई और चली। भाई फिल्म देखने का जो शौक है हमारा ये बड़ा पुराना शौक है, इससे तो आप राजी हैं, है ना। सिल्वर जुबली फिल्में आज के दौर की बात है, कहाँ वो राजेंद्र कुमार के जमाने में, जुबली कुमार उनका नाम था क्योंकि उनकी हर फिल्म जो है वो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली हुआ करती थी। तो अभी वहां से लेकर अब तक, अब इन फिल्मों की भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये 25th एनिवर्सरी है या सिल्वर जुबली है, तो याद हैं ये फिल्में हमें आज भी, यानी रिमार्केबल फिल्में थी, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, है ना। हाँ, तो गड्डी जो है हमारी वो अब आगे बढ़ेगी, हम निकल चुके हैं जब गड्डी लेके, तो एक और मोड़ आएगा, फिर दूसरा मोड़ आएगा। आप समझ गए मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ।

गदर एक प्रेम कथा की मैं बात कर रही हूँ। गदर एक प्रेम कथा रिलीज हुई थी 15 जून 2001 को, और इस फिल्म में हम जानते हैं मुख्य भूमिकाओं में हमने देखा था सनी देओल को, अमीषा पटेल थी और अमरीश पुरी थे। अनिल शर्मा ने ये फिल्म बनाई। अभी एक और उनकी फिल्म आई है, ये इसकी जो रीमेक थी वो हमने देखी, उतनी खास कमाई नहीं कर पाई। गदर पार्ट टू अनिल शर्मा ने ही बनाए लेकिन उतनी अच्छी चली नहीं। और इसी तरह की मोर लेस सिमिलर कहानी पर एक और फिल्म अभी हमने देखा सनी देओल ने की, राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी वो फिल्म बंटवारा, उस पर भी वो वाली बात नहीं है जो गदर एक प्रेम कथा में थी। और कह सकते हैं कि उस दौर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक फिल्म थी ये, और ये भी वही विभाजन के समय पर आधारित एक कहानी है जहाँ तारा सिंह हैं जिन्हें सकीना से इश्क हो जाता है और किस तरह से फिर उनका जो इश्क है वो जीत जाता है। ये जो धरती पर खींची हुई जो लकीरें हैं वो इंसान के दिलों को कहाँ आप मतलब वो अलग रख पाती हैं, कैसे वो दिलों को तोड़ सकती है। इतनी हिम्मत, इतना मुझे कहना चाहिए कि इतनी ज़्यादा ताकत तो है नहीं, ये जितनी लकीरें हैं ये टेम्प्ररी सब लकीरें हैं या कहना चाहिए काल्पनिक। दिलों के रिश्ते हमेशा बेजोड़ होते हैं, यही इस फिल्म का मैसेज था। तो चलिए सुनते हैं निकला गड्डी लेके, उदित नारायण की आवाज़ में आप सुन रहे हैं सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स।

अच्छा सच बताइए तो अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ये पुराने गीत सुनकर लग रहा है कि अरे उसी दौर में हम वापस चले गए, या फिर वो जो दौर है वो आ गया हमको छूने, हमको अपनी महकती हुई ये जो एक जो कहते हैं ना कि सुरीली सौगात है, उससे हमें सराबोर करने। बेहतरीन कॉम्पोजिशन उत्तम सिंह की, और इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने। गदर एक प्रेम कथा का ये गीत हमने सुना। जारी कार्यक्रम सेल्युलॉइड सुपरहिट्स, और अब मैं जिस फिल्म की बात करूंगी वो रिलीज हुई उसी साल 19 अक्टूबर को, और इस रोमांटिक ड्रामा में हमने देखा था माधवन को, जो आजकल कितनी अलग अलग किस्म की फिल्में कर रहे हैं, कितने अलग रोल निभा रहे हैं। उस वक्त के यंग माधवन, साथ में थी दिया मिर्जा और सैफ अली खान। और वैसे शुरुआत में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन बाद में टेलीविजन और होम वीडियो के जरिए इसे कल्ट स्टेटस मिल गया। और कहानी कैसे युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी पसंद की एक लड़की को पाने के लिए वो एक दूसरे व्यक्ति का रूप ले लेता है, वो इम्पोस्टर हो जाता है, वो कहता है कि मैं हूँ वो इंसान, लेकिन एक्चुअली में वो है नहीं, हाँ वो है कोई और। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत एक फिल्म। मैं बात कर रही हूँ रहना है तेरे दिल में की, और इस फिल्म का ये वाला गाना क्या ही कहें, ये तो कहना चाहिए कि उस जमाने के जो प्रेमी है ना उनका एंथम बन गया था ये गाना। कौन सा गीत है चलिए सुनते हैं, रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ में। हैरिस जयराज ने म्यूजिक दिया था और समीर ने इस गाने को लिखा था।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स। और देखते देखते एकदम अंतिम 10 मिनट में हम पहुंच चुके हैं, और अब मैं जिस फिल्म की बात यहां करूंगी उसका नाम है कसूर। फरवरी 2001 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। एक कानूनी थ्रिलर फिल्म थी, विक्रम भट्ट निर्देशक थे और आफताब शिवदासानी और लीसा रे को हमने मुख्य किरदारों में देखा था। इसके अलावा अपूर्व अग्निहोत्री, इरफान खान, दिव्या दत्त और आशुतोष राणा भी कुछ खास रोल्स में इस फिल्म में नजर आए थे। और ये 2 फरवरी 2001 को रिलीज हुई थी जैसे कि मैंने कहा, और बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित रही। और इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन नदीम श्रवण का भी रहा। बहुत खूबसूरत गाने इस फिल्म के

उन्होंने बनाए। और मैं आपको एक और खास बात बताना चाहूंगी, वो ये कि 1985 की अमेरिकन फिल्म जैग्ड एज की ये फिल्म अनौपचारिक रीमेक कही जाती है। चलिए सुनते हैं, जब जिक्र हुआ है कसूर का तो कौन सा गीत मैं आपको सुनवाऊं, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। एक गाना अभी फिलहाल जो मुझे याद आ रहा है, सुनते हैं कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज में।

और अब जिक्र करना चाहूंगी एक ऐसी अंडरडॉग फिल्म का जो मतलब जब रिलीज हुई तो लोगों को लगा ही नहीं कि एक इतनी खूबसूरत सी एक फिल्म है ये। मैं बात कर रही हूँ तुम बिन की, और एक अद्भुत सुंदर एक फिल्म थी जहाँ पर जो किरदार निभाने वाले अभिनेता अभिनेत्री थे सब उतने बड़े नाम नहीं थे, सब स्टार्स नहीं थे इस फिल्म में। प्रियांशु चटर्जी, संदली सिन्हा, हिमांशु मलिक और राकेश बापट को हमने देखा था। अनुभव सिन्हा की ये फिल्म थी, उन्होंने ही कहानी भी लिखी और संगीत था निखिल विनय का। यहाँ भी म्यूजिक ने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया और गीत लिखे थे फैज अनवर ने। अच्छा, कोई फरियाद वो गीत आपको याद है ना, जगजीत सिंह की आवाज़ ने। आपको पता है कि कितने सारे वर्जन्स रिकॉर्ड हुए इस गाने के, अलग अलग मूड में जगजीत सिंह जी ने 5-6 अंतरे थे इसके, अलग अलग मूड में उन्होंने गाए, उसके बाद जाकर डिसाइड हुआ। 10 दिन लग गए कि कौन सा अंतरा रखा जाए कौन सा नहीं ये डिसाइड करने में। खैर, अभी तो फिलहाल समय उतना है नहीं तो दूसरा एक गीत सुनवाऊंगी अभिजीत और चित्रा की आवाज़ में। चैनिका कहेगी टाटा बाय बाय, आप लोग बन रहे हैं ओनली ऑन FM रेनबो कोलकाता।

0: दिल्ली में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज फाइनल के बाद उन्होंने एशियन गेम्स की संभावनाओं को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: हर कंपटीशन लाइक जर्नी का पार्ट होता है। हमारा फाइनल गोल, हमारा फाइनल जो रेस है वो एशियन गेम्स है, हमको वहाँ अच्छा करना है। ये प्रिपरेशन है, ये फिटनेस ट्रायल है और हम अच्छा भागे हैं, बट हाँ होपफुली अच्छा परफॉर्म करेंगे और मेडल जीतेंगे।
0: महिला ट्रिपल जंपर निहारिका वशिष्ठ भी पूरी तरह से तैयार हैं और उन्होंने गोल्ड का लक्ष्य रखा है।
2: देखिए एशियन गेम्स के लिए मेरा टारगेट है कि मैं 14 मीटर्स के ऊपर ही लगाऊं, तो उस चीज को माइंड में रखते हुए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और अपना वो टारगेट अचीव करने की कोशिश करूंगी।
0: हैमर थ्रोअर तानिया चौधरी ने दिल्ली में नेशनल रिकॉर्ड बनाया और उसके बाद एशियन गेम्स के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट है।
3: अभी अपना पीवी किया है तो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ, अब वहाँ पे जाके थ्रो लगाने के लिए अच्छा करेंगे।
0: भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीमें इस बार न सिर्फ मेडल बल्कि गोल्ड मेडल की बड़ी दावेदार रही। दोनों टीमों के पास गोल्ड जीतकर लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का मौका भी है। हॉकी में भारत की उम्मीदों के बारे में हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद आजमी ने बात की भारत के पूर्व कप्तान जफर इकबाल से।
4: जफर साहब, भारत चार बार एशियन गेम्स का गोल्ड जीत चुका है, 2026 में डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगा, इस बार चुनौती कितनी अलग होगी, खासकर जब गोल्ड के साथ टीम 2028 का सीधे ओलंपिक का टिकट हासिल करेगा।
5: देखिए इम्पोर्टेंट तो ये सब गेम्स हैं दोनों मेन एंड वुमेन के लिए, और जो भी जीतेगा नेचुरली वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा ओलंपिक गेम्स के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा सबके दिमाग में होगा, ना कि ओनली हिंदुस्तान की टीम इस बात को सोच रही होगी, क्योंकि जापान इज अ होस्ट कंट्री, ऑल्सो द पाकिस्तान भी है उधर, मलेशिया इज ऑल्सो देयर, साउथ कोरिया इज ऑल्सो देयर। तो मेरे ख्याल में सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा, दिस इज द गोल्डन चांस एनीबॉडी हु विंस द गोल्ड, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा कंपटीशन है एशियन गेम्स का। मगर अगर ये बात कहें कि वर्ल्ड कप या ओलंपिक गेम्स, उसका स्तर अलग है
4: जी,
5: यहाँ का स्तर अलग है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल हिंदुस्तान की टीम, ये तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, बहुत मजबूत टीम है हमारी, बट ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम जीत के गोल्ड ही लेके आएंगे, लाना चाहिए भी, बिकॉज विद द सेम मेंटेलिटी अगर आप जा रहे हैं तो यू कैन डू इट, हमारा अपर हैंड तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट, और हमें मुझे बहुत उम्मीद है कि हम गोल्ड जीतेंगे इसमें, मगर खेलों की दुनिया में यू नेवर नो के व्हाट विल हैपन, तो इसमें मैं जरूर कहूंगा कि हमारी टीम स्ट्रांग है और हम लोगों को मेंटली भी स्ट्रांग रहना चाहिए, फिजिकली, और हम लोग को एक्सपीरियंस भी है, वर्ल्ड कप जब कोई खेलता है तो उसकी प्रिपरेशन हायर लेवल पे चली जाती है, बिकॉज यू हैव टू मीट ऑल दी हाई रैंक टीम, चाहे वो बेल्जियम है, ऑस्ट्रेलिया है, हॉलैंड है, जर्मनी है, तो यहाँ पे अच्छा मुकाबला रहेगा, वी शुड विन द एशियन गेम्स।
4: महिला टीम पिछले दिनों से काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है एशियन गेम्स में, सबसे बड़ी हालांकि चुनौती चीन दक्षिण कोरिया ये है, लेकिन वर्तमान में जिस तरह टीम खेल रही है, जिस तरह वर्ल्ड कप में भारत ने चीन को बराबर पर रोका था, उसको देखते हुए महिला टीम के बारे में क्या कहेंगे, कितनी संभावना है?
5: नहीं, अच्छी संभावना है कि मेडल पोडियम पे ये आ सकती है, क्योंकि जब वर्ल्ड कप में फिफ्थ पोजीशन लेके आए हैं तो इट्स बिग अचीवमेंट फॉर द वुमेन्स टीम।
0: वेटलिफ्टिंग में एशियन गेम्स में इस बार सिर्फ महिला वर्ग में भारतीय चुनौती है। भारतीय वेटलिफ्टिंग दल की अगुवाई 49 किलो भार वर्ग में मीराबाई चानू करेंगी। उनके सामने अपने पिछले रजत पदक का रंग बदलने का बड़ा दबाव होगा, लेकिन हर दबाव से निकलकर निखरने के लिए भारतीय वेटलिफ्टिंग दल तैयार है। भारतीय टीम की सदस्य ज्ञानेश्वरी, जो 53 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लेंगी, वो बता रही हैं कि मुश्किलें तो होंगी, लेकिन अच्छा करने का लक्ष्य इस बार तय कर रखा है।
6: मैं चाहूंगी कि अपना बेस्ट प्रदर्शन करूं। एशियन कंट्रीज, चाइना और बाकी अदर कंट्रीज भी आती है तो थोड़ा टफ रहता है।
0: हरजिंदर कौर, जो 69 किलोग्राम भार वर्ग

0: भारतीय दल की उम्मीद होंगी वो बताती हैं कि वो अपना बेस्ट प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
1: टारगेट मेरा यही रहेगा कि मैं अपना बेस्ट दे के आऊं परफॉर्मेंस, जैसे मैंने कॉमनवेल्थ गेम में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था।
0: और अब बात शूटिंग की। इस बार पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर की मौजूदगी में भारतीय शूटिंग टीम के सामने हांगझू के 22 पदकों के रिकॉर्ड को पार करने की बड़ी चुनौती है। टीम कितनी तैयार है और क्या उम्मीदें हैं बता रहे हैं ट्रैप शूटर केनन चिनाई। केनन, इस बार फिर से मेंस ट्रैप इंडिविजुअल इवेंट और मेंस ट्रैप टीम इवेंट में आप उतरने जा रहे हैं, हांगझू की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए इस बार कैसी तैयारी है?
2: सर, हमारा तैयारी तो बहुत अच्छा रहा इस बार। पहले हमारा हाई परफॉर्मेंस कैंप था 10 दिन कोचेस के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, तो हम थोड़ा प्रेपरेशन में और ध्यान दिए इस बार और थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस दिए प्रेपरेशन में। इस बार हमारा कोच भी बहुत स्ट्रिक्ट है प्रेपरेशन में, तो हमारा स्पोर्ट्स साइंस टीम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दिए इस बार, क्योंकि जापान जा रहे हैं, इस बार चाइना नहीं जा रहे हैं और कंडीशंस डिफरेंट रहेगा, वेदर डिफरेंट रहेगा, फूड डिफरेंट रहेगा, अकोमोडेशन भी डिफरेंट रहेगा, तो देखी जाएगी सर वहाँ जाके कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए।
0: और पिछली बार टीम इवेंट में तो गोल्ड आया था लेकिन इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल दूर रह गया था। पिछली बार वो कौन सा पहलू रह गया था जिसमें सुधार कर इस बार गोल्ड जीतकर तिरंगे को सबसे ऊपर फहराने का टारगेट आपने तय किया हुआ है?
2: सर, वो तो कभी भी ड्रीम है, वो तो दिल में कभी भी रहता है। जो भी कंपटीशन पे गए तो वही दिल में रहता है, वही दिमाग में रहता है। लास्ट टाइम मैंने ब्रॉन्ज जीता था इंडिविजुअल में, तो अच्छा था सर। वो मेरा सेकंड गेम्स था, ये मेरा तीसरा गेम्स है, तो कोशिश तो पूरा करेंगे सर।
0: आपके ट्रैप इवेंट में मुख्य रूप से किन एशियाई देशों की तगड़ी चुनौती होती है और उससे निपटने के लिए आपने अपने कोच अंशर सिंह के साथ और चेक कोच डेविड कॉन्स्टेलिंकी के साथ क्या खास प्लानिंग की है?
2: ऐसे तो प्लानिंग नहीं करे कौन से नेशन को हराएंगे, मगर ऐसे प्लानिंग करेगी हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे आएंगे, हमारा बेस्ट एफर्ट कौन सा टारगेट्स पे प्रैक्टिस करना है, कौन सा बंदूक यूज करना है, कौन सा एम्युनिशन यूज करना है, वो सब डिस्कशन होते रहते।
0: और के नाम, पिछली बार भारतीय शूटिंग दल ने 22 मेडल जीते थे, बहुत बड़ी संख्या थी, इस बार कितनी उम्मीद की जा रही है क्योंकि आप तो टीम के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कैसी परफॉर्मेंस चल रही है वो भी चर्चा होती होगी, तो ओवरऑल क्या लग रहा है?
2: सर, ऐसा है कि हमारा राइफल पिस्टल टीम मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है वर्ल्ड में, तो आई थिंक दे विल डू रियली वेल। I think they have a very, very good chance in beating a lot of the countries and gaining medals for our country. Shotgun team also is coming up very well. We have a young team going this time. So I think what I've seen at least in the camps and in the preparation to the games, that everybody is putting their best foot forward. बहुत ज़्यादा effort दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा training कर रहे हैं, तो कुछ तो positive आएगा।
0: भारत का मुक्केबाजी दल हमेशा मेडल का बड़ा दावेदार रहा है। पिछली बार लवलीना बोरगोहेन के सिल्वर समेत भारतीय दल ने 5 पदक जीते थे, इस बार उससे आगे निकलने का इरादा है। पदक जीतने की कितनी उम्मीदें हैं और पिछली बार से कितना बेहतर भारतीय दल कर सकता है, इस बारे में बता रहे हैं भारतीय बॉक्सिंग दल के पूर्व चीफ कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त एसआर सिंह।
3: देखिए, हमारे पास इस टाइम 6 लड़के और 5 लड़कियां जो है टीम में गई हैं और काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, जो कि एक्सपीरियंस टीम है, जो पीछे कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। स्पेशली लड़कियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और लड़कों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, 2 गोल्ड मेडलिस्ट थे उसमें, तो हमें उनसे एक्सपेक्टेशन है अच्छा प्रदर्शन करें।
0: आईची नागोया में भारतीय कुश्ती दल से देश को कई पदक जीतने की मजबूत उम्मीद है। भारतीय दल की बात करें तो पुरुष फ्री स्टाइल में अमन सहरावत हैं, सुजीत कलकल हैं, सागर जगलान, दीपक पूनिया और रजत रोहल की चुनौती होगी। महिला फ्री स्टाइल में अंतिम पंगाल 53 किलोग्राम, निशा दहिया 68 किलोग्राम, मानसी अहलावत 62 किलोग्राम, मनीषा भानवाला 57 किलोग्राम, दीपांशी 50 किलोग्राम और प्रिया मलिक 72 किलोग्राम में चुनौती पेश करेंगी। ग्रीको रोमन में भी हमारे 3 पहलवानों की चुनौती होगी। दीपांशी कहती है कि गोल्ड जीतने के लिए इस बार पूरी तैयारी है।
4: तैयारी बहुत ही अच्छी है, जाएंगे कॉन्फिडेंस से और मेडल लेके आएंगे वहाँ से।
5: कितना जोश है?
4: फुल 100 of 100।
5: कितने मेडल आएंगे?
4: जितने हम बच्चे जाएंगे रेसलिंग से उतने ही मेडल आएंगे हमारे।
0: 68 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी चुनौती पेश करने जा रही निशा बता रही है कि तिरंगा लहराने का इस बार लक्ष्य तय कर रखा है।
4: तिरंगा ही लहराना वहाँ जाके, मेरा तो एम यही है।
0: पहलवान प्रिया मलिक का कहना है कि किसी का डर नहीं है, भारत बेस्ट है।
6: प्लान तो यही है सर कि अपना बेस्ट देना है।

0: हैं कि अपना 100% देंगे और अच्छा करेंगे।
1: जो जापान कोरिया की जो डर था वो निकल चुका है, उनकी लड़कियां बड़ा मजबूत है।
0: नहीं सर, कोई डर नहीं है, हम ही सबसे बेस्ट है, इंडिया सबसे बेस्ट है।
2: पुरुष वर्ग में सुनील कुमार इस बार मेडल की उम्मीद कर रहे हैं।
3: पिछली बार मैंने ब्रोंज मेडल जीता था, अगली बार मेडल का रंग चेंज करूंगा, गोल्ड मेडल लेके आऊंगा देश के।
1: इस बार क्या ज्यादा फोकस किया है इस एशियन गेम्स के लिए, जो तैयारियां की, किन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया है?
3: ग्राउंड रेसलिंग पे ज्यादा फोकस किया।
1: क्या लग रहा है इस बार कितने पदक कुश्ती से आएंगे?
3: कम से कम 10 मेडल देंगे कुश्ती के।
2: भारत के पारंपरिक खेल कबड्डी में पहले कोई खास चुनौती नहीं दिखती थी, लेकिन अब पुरुषों और महिलाओं दोनों वर्गों में ईरान की कड़ी चुनौती सामने आती है। भारतीय पुरुष टीम के सदस्य पवन इस बार की संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं।
4: बिल्कुल मेडल लेके आएंगे, और कबड्डी से हमेशा एक्सपेक्टेशन रही है कि मेडल लेके आई है, और आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कबड्डी बिना मेडल के आई हो। 2018 में ऐसा हुआ था कि जो थर्ड पे फिनिश किया था, लेकिन अभी 2022-23 में जब भी हम मेडल लेके आए थे, गोल्ड लेके आए थे, और डेफिनेटली अभी गोल्ड लेके आएंगे।
2: क्रिकेट की बात करें तो इस बार भारत अपनी सेकेंड ग्रेड टीम नहीं बल्कि मुख्य टीम को मैदान पर उतार रही है। पुरुष टीम कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में सीधे क्वार्टर फाइनल से शुरुआत करेगी। महिला वर्ग में कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम अपने स्वर्ण पदक की रक्षा के लिए उतर रही है। भारत ने अपना क्वार्टर फाइनल मैच जापान के खिलाफ जीत लिया है। अब सेमीफाइनल मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ 20 सितंबर को होगा। अपने पारंपरिक खेल तीरंदाजी में हमें अक्सर बहुत उम्मीदें रहती हैं। हम आपको बता दें कि पिछले एशियन गेम्स में कंपाउंड इवेंट में हम सुपर पावर साबित हुए थे और 5 के 5 गोल्ड मेडल जीते थे। कंपाउंड और रिकर्व श्रेणियों में कुल मिलाकर 12 खिलाड़ी इस बार भाग ले रहे हैं। पहले सुन लेते हैं कंपाउंड आर्चर प्रतीका प्रदीप संभावनाओं को लेकर क्या कह रही हैं।
5: मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं अपने शूटिंग पर फोकस करूंगी और इंडिया के लिए मेडल लाने की पूरी कोशिश करूंगी। लेट अस होप फॉर द बेस्ट कि सारे ही मेडल आए। इस बार सब अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, वही तैयारी चल रही है, सो विल डू आवर बेस्ट।
2: रिकर्व टीम से भी इस बार बेहतर प्रदर्शन की संभावनाएं हैं, ऐसा रिकर्व टीम की सदस्य कुमकुम महोत भी मान रही हैं।
6: एशियन गेम्स में उम्मीद, मतलब मैं मेरा बेस्ट दूंगी, मेडल तो आएगा, 100% आएगा, और मेडल टीम का भी हो सकता है, मिक्स टीम का भी हो सकता है, और इंडिविजुअल का भी हो सकता है।
2: वॉलीबॉल कभी हमारा ताकत वाला खेल नहीं रहा है, फिर भी इस बार हम उलटफेर के लिए तैयार हैं। एशिया के शीर्ष देशों की मौजूदगी में बेहतर प्रदर्शन इस बार हमारा एकमात्र लक्ष्य है। बैडमिंटन में एशियाई टीमें दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में शुमार हैं। इन देशों में भारत भी शामिल है, लेकिन सच ये भी है कि 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु अपने शिखर से ढलान की तरफ हैं। वहीं युवा सनसनी लक्ष्य सेन के प्रदर्शन में निरंतरता की कमी दिखाई देती है। आयुष शेट्टी और उन्नति हुड्डा जैसे कुछ युवा चेहरे जरूर कुछ प्रभावित करने में सफल रहे हैं। हालांकि डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मेंस डबल्स जोड़ी इस बार भी कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है। संभावनाओं को लेकर चिराग शेट्टी खुद क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं।
7: एशियन गेम्स के लिए आई थिंक इट्स ऑलवेज लाइक अ लॉट ऑफ पीपल विल से दैट या वी आर द पेयर टू बीट अ वीक और टू इन मिड बिफोर द एशियन गेम्स। आई वुडंट से दैट देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर गुड पेयर्स एज वेल। वी जस्ट वांट टू गो आउट देयर एंड हैव एज मच फन एज वी नॉर्मली डू ऑन अ बैडमिंटन कोर्ट, एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट आई थिंक वी विल बी एबल टू गो डीप इनटू द टूर्नामेंट, एंड दैट्स That's the only thing we want to do, like not really think too much about the results. When we are able to keep the results aside and take one match at a time, I think we do really well.
2: चीन और जापान जैसे देशों की मौजूदगी में टेबल टेनिस में पदक तक पहुंच पाना हमेशा से एक कठिन चुनौती रही है, लेकिन मानुष शाह, मानव ठक्कर, हरमीत देसाई, श्रीजा अकुला, दिया चितले, सिंड्रेला दास और पायस जैन जैसे युवा खिलाड़ियों से इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस के गोल्ड मेडलिस्ट पायस जैन क्या कुछ कहते हैं इस बारे में वो जानते हैं।
8: तैयारियां काफी अच्छी चल रही है एशियन गेम्स के लिए, और जो हमारा पास्ट परफॉर्मेंसेस है टेबल टेनिस का एशियन गेम्स में, एंड अभी इस साल में फिर बात करूँ कि डबल्स है, मिक्स डबल्स है, सिंगल्स है, आई फील कि हम सारे अच्छे कर रहे हैं, एंड या वी आर रेडी जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं एशियन गेम्स के लिए, एंड रियली हैप्पी एंड ऑनर्ड एशियन गेम्स जाने के लिए। लेट्स सी हाउ इट गोज, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई कैनॉट पिन पॉइंट कि कितने आएंगे, कैसे आएंगे, यू कैनॉट, मतलब स्पोर्ट्स है, बट आई फील कि या इट्स गोइंग टू बी बेटर देन द लास्ट टाइम।
2: स्क्वाश में अनाहत सिंह ने हाल में कई चौंकाने वाले परिणाम दिए हैं। अपने से कहीं ऊंची रैंकिंग वाले खिलाड़ियों को कई मौकों पर मात दी है। साथ ही जोशना चिनप्पा और अभय सिंह जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी इस बार भारतीय टीम में शामिल हैं, तो पदक की पुख्ता उम्मीदें हैं। पदक की संभावनाओं को लेकर क्या कहती हैं युवा खिलाड़ी अनाहत सिंह?
9: So I'd love to change the color of the medal. It'd be great to, you know, be able to go up a step. But of course, the competition's a lot. There's a lot of different players from different countries who are in the top in the world right now. But I mean, hopefully, I'm able to do something and I'm able to train hard towards the Asian Games and do well.
2: भारतीय मार्शल आर्ट्स के लिहाज से वुशु हमेशा से एक ऐसा साइलेंट परफॉर्मर रहा है जिसने वैश्विक स्तर पर देश को लगातार गौरव दिलाया है। इस बार भी भारत को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कोच अमित पाल टीम की संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं।
10: अभी इस एशियन गेम्स के लिए हमारी टीम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और लास्ट ईयर हमने एक सिल्वर मेडल लिया था, बट इस बार मे बी होप हम 7 एथलीट जा रहे हैं और मे बी हम 5 टू 6 के आसपास में मेडल सिक्योर करेंगे। इस बार पूरा कॉन्फिडेंस हमें।
2: जूडो में हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में कमाल किया। इस बार भी अस्मिता डे, यामिनी मौर्या और आई तखिलबम की मौजूदगी से टीम से बहुत बढ़िया प्रदर्शन की संभावना है, ऐसा खुद अस्मिता डे मान रही है।
11: अभी मैं यही माइंडसेट करके जा रही हूँ कि मुझे गोल्ड जीतना है फिर से देश के लिए, अपने देश के लिए एशियन गेम्स में भी, तो इसीलिए मैं अभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रही हूँ, ट्रेनिंग कर रही हूँ। बाकी तो भगवान के ऊपर है, मैं जरूर लेके आऊंगी।
2: भारतीय तैराकों से पदक की उम्मीद से ज्यादा एशियन गेम्स के कड़े पूल्स में टाइमिंग सुधारने और फाइनल में जगह बनाने की कड़ी चुनौती होगी। देखना है इस बार भारतीय तैराक उन उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। वर्चुअल स्पोर्ट्स के दौर में भारतीय ई स्पोर्ट्स टीम ने अब तक एशियन गेम्स में सिर्फ एक कांस्य पदक जीता है, इस बार उससे बेहतर की उम्मीद है। भारतीय ई स्पोर्ट्स के महासचिव लोकेश सूजी कहते हैं कि चारों इवेंट में इस बार हम पदक जीतेंगे।
12: की बार हमारे चार गेम टाइटल्स के लिए हमारे ई स्पोर्ट्स एथलीट जा रहे हैं, टोटल 15। पूरे कॉन्फिडेंट है कि हमारे एक्चुअली चारों के चारों जो टाइटल्स हैं उसमें हमारे मेडल आएंगे।
2: पोकेमॉन यूनाइट में पदक को लेकर आशान्वित हैं टीम के सदस्य अदनान।
13: I have been playing since 5 years. मैं 5 साल में से 4 साल जीता ही हूँ ये गेम में, एंड यस एज एन ऑफिशियल इंडिया को रिप्रेजेंट करना फर्स्ट टाइम है। हम तो गोल्ड का ही ट्राई कर रहे हैं, पूरी कोशिश रहेगी। अभी रिसेंट में एक इवेंट हुआ था उसमें हम लोग सेकंड आए थे एशिया में ही, तो वी आर गोना ट्राई फॉर गोल्ड दिस टाइम।
2: एशियन गेम्स में टेक बॉल का डेब्यू हो रहा है, ये खेल नया है लेकिन भारत का दावा तगड़ा है। इस बात की झलक क्यूमसी डिसूजा के प्रदर्शन से मिल गई है। उन्होंने विमेन्स सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचकर अपनी पदक की दावेदारी पेश कर दी है। उन्होंने पहले मैच में कंबोडियन प्रतिद्वंदी को हराया, फिर जापान की वर्ल्ड नंबर 7 युइना साकामोतो को हराया। अब वो पदक से सिर्फ एक जीत दूर रह गई हैं। कल सुबह उनका सेमीफाइनल मैच इंडोनेशिया की सुमाया से होगा। हालांकि मिक्स डबल्स में अपने साथी अनस इमरान के साथ वियतनामी जोड़ी के हाथों क्वार्टर फाइनल में हार से उनकी चुनौती समाप्त हो गई है। आईचीन अगोया एशियन गेम्स में भारत की तैयारियों और संभावनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय खेल प्राधिकरण साई की खेल पत्रकार हिमिका चौधरी। हिमिका, सबसे पहला सवाल और सबसे पहली बात ये कि एशियन गेम्स 2026 में शूटर और ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर और एशियन गेम्स में शॉटपुट के गोल्ड मेडलिस्ट तेजिंदर पाल सिंह तूर आईची नागोया में भारतीय दल के फ्लैग बेयरर होंगे, ये इन खिलाड़ियों के लिए कितना बड़ा मौका है और जो ये फैसला लिया गया है ये कितना अच्छा है?
14: नमस्कार, आपका ये जो सवाल है, देखिए फ्लैग बेयरर एक देश के लिए बनना वो किसी भी खिलाड़ी के लिए इतना बड़ा एक मौका है, एक गर्व की बात है। और जब इनको, जैसा आपने पूछा कि इन दोनों को चुना गया ये कितनी अच्छी बात है, मनु क्योंकि जैसा आपने कहा डबल ओलंपिक मेडलिस्ट है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है स्पेशली यंग जनरेशन के बीच, तो मुझे लगता है उसका सिलेक्शन जेंजी को भी बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा ये खेल देखने के लिए। और तेजिंदर पाल तूर का तो बहुत बड़ा फॉलोइंग है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, और हमें पता है कि हरियाणा पंजाब इस इलाके के जो बच्चे हैं वो खेल में काफी रुचि रखते हैं, शायद इंडिया में सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं, तो उनके लिए भी मुझे लगता है कि एक बहुत ही इनकरेजिंग मोमेंट होगा जब वो देखेंगे उनमें से कोई जो है इंडिया का फ्लैग बेरर बनके आईची नगोया में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
2: और इस बार संख्या की बात करें तो भारत का दल छोटा है लेकिन पदक की जो उम्मीद है वो पिछली बार से ज्यादा की जा रही है, इसकी आखिर क्या वजह है?
14: देखिए, जब एक कंटिंजेंट जाती है हमेशा यही सोच रहता है कि पिछली बार से

0: ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स लेके आएंगे। पर खेल एक ऐसी चीज है जिसमें कहना बहुत मुश्किल है कि पिछली बार से ज्यादा होगा या कम। इस बार जैसा कि आपने कहा कि कंटिंजेंट छोटी है, पिछली बार के मुकाबले ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा एथलीट जो है इस बार हम कम भेज रहे हैं, 501 का टोटल कंटिंजेंट है। तो जब कंटिंजेंट कम होती है हम कभी सोचते हैं कि शायद फिर इसके साथ के मेडल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, नंबर ऑफ मेडल ज्यादा या कम ये कहना मुश्किल होगा। ये जरूर कह सकती हूँ कि जिस तरह का हमारा तैयारी है, जो पिछली बार हमने जीता था उसके आसपास तो हम लोग जरूर लेके आएंगे। अगर आप देखें तो जो एथलीट टू मेडल रेशियो होता है कि कितने एथलीट आपने भेजे और आपके देश ने कितने मेडल्स जीते, वो इस बार जरूर बढ़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पिछली बार 800 के करीब बच्चों ने मिलके 100 से थोड़े ज्यादा मेडल जीते थे और इस बार अगर वही नंबर 500 बच्चे ले आते हैं तो एथलीट टू मेडल रेशियो इस बार हम जरूर कह सकते हैं कि ज्यादा होगा। और उम्मीद तो देखिए यही है कि 100 से थोड़ा ज्यादा, पर मुझे लगता है कि ये नंबर्स कह के एथलीट पे प्रेशर हम क्रिएट ना करें, उनके लिए चीयर करते रहे, चीयर फॉर भारत जैसा हम कहते हैं। मेडल्स ज्यादा जरूर होंगे या उसी के करीब होंगे, बट जो भी होंगे हमारे एथलीट्स उनके 100% देके आएंगे।
1: और भारतीय दल में इस बार 300 से अधिक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बेहद युवा हैं और पहली बार इतने बड़े मंच पर उतर रहे हैं, इस बारे में सोच क्या रही है?
0: देखिए, ये स्पोर्ट्स फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जब भी हम इंडियन स्पोर्ट के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं तो कोई वही चार गिने चुने नाम आते हैं हर स्पोर्टिंग डिसिप्लिन में कि बस यही लोग हैं जो शायद मेडल ले आ पाएंगे। बट इस बार जैसा आपने कहा कि 501 में से 310, विच इज लाइक अराउंड 63% ऑफ द टोटल कंटिंजेंट आर गोइंग टू द एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो जा रहे हैं। तो इससे ये दर्शाता है कि हमारा जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो किसी भी एक इवॉल्विंग स्पोर्टिंग नेशन के लिए बेहद जरूरी है, तो इसी कारण से मुझे लगता है कि नए जो युवा, जैसे आप देखिए अनाहत स्क्वाश में हम हमेशा वही रहता है, जोशना चिनप्पा, सौरभ घोषाल, यही लोग शायद कुछ कर पाए हमारे लिए, बट इस बार अनाहत का बहुत बड़ा चांस है। हर एक स्पोर्ट में जो टीम्स है वो यंगर होती जा रही हैं और ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एज अ कंट्री कि हम सही दिशा में जा रहे हैं।
1: जी, और सरकार ने भी और तमाम खेल संघों ने भी इस बार एशियन गेम्स के लिए खुले हाथ से खर्च किए हैं और कहें तो खिलाड़ियों पर जो सुविधाएं उनको चाहिए, जिस तरह की फैसिलिटीज चाहिए, सब पर बहुत ज्यादा खर्च किया गया है, इस बारे में भी कुछ बताएं।
0: देखिए, 2014 के बाद जब 2019 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का लॉन्च हुआ और उसके बाद खेलो इंडिया का लॉन्च हुआ, तभी से लेके सरकार की तरफ से स्पोर्ट्स में जो बजट है वो बढ़ाया ही जा रहा है ताकि टैलेंट को मौका मिले। इस बार का जो खेलो इंडिया का बजट है वो 10 times ज्यादा करके 36,000 crore कर दिया गया है। तो पैसा तो डेफिनेटली खर्चा किया जा रहा है। इस बार का भी जो हमारा बजट है वो 702 करोड़ रुपए है, पर मुझे लगता है कि पैसा खर्चा कर रहे हैं ये तो सही है, पिछले कुछ 10 सालों से कर ही रहे हैं, पर सही जगह पैसा खर्चा करना, जो एथलीट की नीड है वहाँ पे सपोर्ट देना और सही टाइम पे देना, मुझे लगता है ये दोनों चीजें हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। CWG में भी किया था जिसके वजह से आपने मेडल्स का टैली आपने देखा कितना बड़ा। एक एथलीट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है इंटरनेशनल एक्सपोजर, क्योंकि इंटरनेशनली ट्रेन करते हैं तभी उनको समझ में आता है कि दूसरे देशों के एथलीट्स कितना अच्छा कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल एक्सपोजर में मुझे बताते हुए खुशी है कि जो बजट है वो इस साल का कुछ सिर्फ एशियन गेम्स के लिए कुछ 40 करोड़ रुपए का था। अलग अलग एथलीट्स अलग अलग जगहों में जाके ट्रेन किया, जैसे एथलेटिक्स वाले थे वो यूएसए में बहुत लंबे समय तक रहे, पोलैंड में रहे, स्पाला में। टेनिस के जो बच्चे थे उनको भी हमने भेजा सियोल साउथ कोरिया में, वेटलिफ्टिंग वाले बर्मिंगहम में थे, रेसलिंग रशिया और उज्बेकिस्तान, क्योंकि स्पारिंग पार्टनर वहां पे सबसे ज्यादा बढ़िया मिलता है, शूटिंग वाले इटली में थे। तो इस तरह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इंटरनेशनली अपने आप को ट्रेन कर रहे थे। और जब हम कहे कि इंटरनेशनली ट्रेन कर रहे थे, क्या इसका मतलब है कि भारत में ट्रेनिंग अच्छी नहीं है? बात वो नहीं है, बात हमेशा यही होती है कि इंटरनेशनली ट्रेन करते हैं तो हर एक देश के एथलीट के साथ वो मुकाबला करते हैं और वो उनको वो कॉन्फिडेंस देती है कि एक मल्टीनेशनल स्पोर्टिंग इकोसिस्टम में जाके वो परफॉर्म कर पाए। एथलीट के लिए कोच एक बहुत अहम हिस्सा, सबसे अहम हिस्सा हम कह सकते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट, डाइट, फॉरेन एक्सपोजर सब कुछ एक जगह पर, जो कोचिंग है वो अगर उनको सही नहीं मिले, फिर चाहे आप उन्हें कहीं भी भेज

0: दे, वो उस तरह का टेक्निक वो सीख नहीं पाएंगे, वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो साइकी कोचेस है, जो इंडियन कोचेस है, वो तो उनको ट्रेन पूरे साल कर ही रहे हैं, पर साथ में हम लोग इस बार 50 से ज्यादा फॉरेन कोचेस लेके आए हैं, जिसमें से मान लीजिए 14 जो है वो एथलेटिक्स में है। कारण उसका यही था कि फॉरेन कोचेस, जस्ट लाइक फॉरेन एक्सपोजर, जब वो लोग जाके इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। फॉरेन कोचेस उनके इंटरनेशनल टेक्निक्स लेके आते हैं और इस तरह से चूज किया जाता है कि जिस देश का जो कोच सबसे अच्छा है इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन, उनको हम लेके आते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि फॉरेन कोचेस का एक अहम भूमिका इस बार भी रहेगा।
1: और एक सवाल ये भी तो होता है कि इस बार हमने खिलाड़ियों को वैसी कंडीशंस दी ट्रेनिंग के लिए जैसा कंडीशन हमें आईची नागोया में मिलेगा खिलाड़ियों को अपना खेल प्रदर्शित करने के लिए, और ठहरने के भी कुछ ऐसे इंतजाम किए गए जैसे कंटेनर में और क्रूज में ठहराने की जो व्यवस्था है जापान में, उस पर भी काफी कुछ किया गया।
0: देखिए, एथलीट का जो मेंटल स्टेटस है ना, वो हमेशा डिसाइड करती है एथलीट का परफॉर्मेंस। क्योंकि वही बात है कि हम एग्जाम के लिए पूरे प्रिपेयर होके तो गए, पर एग्जामिनेशन हॉल में अगर मान लीजिए बहुत गर्मी हो या इस तरह का कुछ सिचुएशन हो जहाँ पे हम लिख ही नहीं पा रहे हैं पेपर, उसी पे हमारा ध्यान चला जाए तो हम शायद परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो एथलीट के लिए भी चीज वही है। हमें पता था बहुत पहले से कि नगोया के कुछ बहुत यूनिक चैलेंजेस रहेंगे। नगोया बहुत ज्यादा कोई बड़ा शहर नहीं है, एक इंडस्ट्रियल हब है, और नगोया के लिए भी इतने सारे एथलीट्स को एक साथ रखना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। उन्होंने पहले ही बोला था कि होटल्स हमारे पास इनफ नहीं है, तो हम इसलिए जो एथलीट्स है उनको कंटेनर्स में रखेंगे, हट्स में रखेंगे, क्रूजेस में रखेंगे। तो ये जैसे ही हम लोगों को पता चला तो हमें लगा कि ये बहुत जरूरी है कि एथलीट को भी हम वो ट्रेनिंग दे कि उस सिचुएशन में जाके उनको ये ना लगे कि ये मेरी बेड बहुत छोटी है, मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है कंटेनर के अंदर, तो वही सोच सोच के उनका जो परफॉर्मेंस है वो बिगड़ जाए। इसलिए साई बेंगलुरु का जो मेन सेंटर है एथलेटिक्स और बहुत सारे वहाँ पे प्रशिक्षण होते हैं, पटियाला आप जानते हैं बॉक्सिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग और कुछ एथलेटिक्स के भी वहाँ पे एथलीट्स हैं, ये दो मेन जगहों में हमने कंटेनर्स बनाए जो एकदम उसी स्पेसिफिकेशन का था जो उनको जापान में मिलेगा। तो बेड्स थोड़ी छोटी थी, चलने फिरने का जगह थोड़ा छोटा था, पर हमने उनको इस तरह से ट्रेन किया ताकि उनको उन्हीं कंटेनर्स में उनको रखा गया, वही वो लोग सोते थे, वही वो लोग जो अपना है उठ के जो थोड़ा सा वार्म अप करना होता है कभी, तो वो सब वो लोग वहाँ पे करते थे ताकि वहाँ पहुँच के उनको नहीं लगे कि अरे ये हम कहाँ आ गए।
1: हेमिका, स्टूडियो में आने के लिए, आकाशवाणी से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: एशियन गेम्स में पदकों की जद्दोजहद में आगे निकलने के लिए मुकाबले शुरू हो चुके हैं। औपचारिक उद्घाटन में सिर्फ कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, फिर मेडल टेबल में देशों और खिलाड़ियों के नाम दर्ज होने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है पदकों की सूची में भारत का नाम भी शीर्ष देशों में शुमार होगा। एशियाई खेलों पर विशेष कार्यक्रम के साथ कल रात 10 बजे हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज, स्वाति और मोहम्मद शाहिद आजमी की रिपोर्ट के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

दोस्तों फिलहाल डॉन आपके साथ नहीं है, आपका रेडियो वाला दोस्त रोशन मुरार का आपके साथ है लेकर कार्यक्रम छायालोक। अभी से लेकर 9 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा, आपके गीतों की फरमाइश को लूंगा, आपके पसंद के गीत बजाऊंगा। नंबर है हमारा 2213-1341, नंबर एक बार फिर से जान लीजिए 2213-1341।

0: चलिए दोस्तों फोन कॉल पर कॉलर फ्रेंड आ चुके हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो हाँ तिरुपति अशोक कौर बोलती।
0: बोलिए अशोक जी, कैसे हैं?
1: आप ठीक ही है? आप ठीक है ना?
0: ठीक ही है क्यों, ठीक अच्छे है नहीं है?
1: पंखा चल रहा है तो इसीलिए फोन नहीं जा रहा है।
0: अच्छा पंखा चल रहा है तो
1: सुन नहीं सकता है ज्यादा।
0: अच्छा तो पंखा बोलिए, पंखा कम कर दीजिए ना, बंद कर दीजिए ना, क्या है, एक मिनट तो कर ही सकते हैं।
1: ठीक है ठीक है,
0: बताइए कैसे हैं?
1: हम ठीक ही है।
0: ठीक ही है क्यों, अच्छे क्यों नहीं है ये बताइए पहले। अच्छे क्यों नहीं है, ठीक ही है मतलब लग रहा है कुछ डाउन डाउन है क्या?
1: वॉइस हो गया ना, 64 चल रहा है अभी।
0: अरे तो 64 है तो क्या हुआ भाई,
1: बुढ़ा हो गया अभी?
0: ना ना देखिए भाई साहब, ऐसा है जिस दिन आप सोच लेंगे ना कि आप बुढ़े हो गए उस दिन बुढ़े होंगे, है ना?
1: हाँ
0: बताइए क्या सुनना चाहेंगे?
1: करण अर्जुन से गुपचुप गुपचुप गाना।
0: तब बताइए गाना, तो आप यंग वाला सुनना चाह रहे हैं और बोल रहे हैं
1: पुराना गाना तो खोजा आपको मिला नहीं है।
0: ओहो लेकिन वो बात सही है, लेकिन आप गाना तो यंग जनरेशन वाला सुन रहे हैं तो ऐसे बने रहिए, है ना?
1: हाँ,
0: चलिए
1: पुराना गाना पहले ही सोचा है।
0: चलिए ठीक है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

0: हाय।
1: चलिए दोस्तों, देखते हैं कॉलर फ्रेंड आ गए हैं, उनसे बातें कर लेते हैं, वक्त बहुत कम है। हेलो
2: हेलो रोशन जी, नमस्कार। जय राधे।
1: नमस्कार राधे। नमस्कार जय राधे, बताइए।
2: और आज तो त्योहार है, विश्वकर्मा पूजा है
1: जी,
2: और आपके जो राना पूजा है ये हुई है। जगह हम गए, हमारा निमंत्रण भी था, वहाँ हम गए।
1: क्या क्या खाया भाई साहब?
2: अब तो ये बताने से काफी समय बर्बाद होगा,
1: शॉर्ट में बताइए ना, एक दो गायब कर दीजिए।
2: चावल है और सब्जी है, तरह तरह की सब्जी थी, मछली भी थी।
1: क्या बात
2: बहुत
1: है,
2: खाना था।
1: बहुत सारे सुनने वालों के मुंह में पानी आ गया होगा।
2: और बहुत आनंद के साथ दिन गुजारा, और पतंग भी हमने खूब उड़ाई। तो बस पतंग उड़ाई, लेकिन एक बजे जो है बारिश आ करके जहाँ मामला बिगड़ गया।
1: तो भाई क्या सारा दिन पतंग थोड़ी उड़ाएंगे, है ना?
2: हाँ, लेकिन मजा आ रहा था, लेकिन बारिश ने थोड़ी सी परेशानी हमको डाला है।
1: तो चलिए कोई बात नहीं, वो तो प्रकृति का एक रूप है, उसको भी रखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ बताइए।
2: तो मेरा एक गीत है, चली चली रे पतंग मेरी चली रे।
1: क्या बात है, कौन बोल रहे? ये तो आपने शायद बताया नहीं अपना नाम।
2: जहाँ जाता हूँ होती है हलचल, प्यार से लोग कहते हैं मुझे श्याम कुमार चंचल।
1: क्या बात है, चलिए तो पतंग उड़ा देते हैं, है ना?
2: चलिए हमारी पतंग उड़ाइए और काटिए भी।
1: ओके जी, नमस्कार।

0: चलिए दोस्तों, कॉलर फ्रेंड हाजिर है, वक्त बहुत कम है, फटाफट उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो,
1: गुड इवनिंग रोशन जी।
0: गुड इवनिंग,
1: मैं मोनिरुद्दीन बोल रहा हूँ।
0: बोलिए मोनिरुद्दीन जी, कैसे हैं?
1: टेल मी, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट योर वॉइस। योर वॉइस इज नॉट जस्ट ए साउंड ऑफ माय ईयर, इट्स योर दैट इज अवेकनिंग ऑल माय फियर। The moment you speak, the world stop its voice. This noise, music is nothing compared to sound of your voice.
0: अरे मनोरंजन जी, आज तो इंग्लिश में तैयारी करके आए हो भाई।
1: Just for you.
0: वाह वाह, क्या बात है, कभी हिंदी कभी इंग्लिश, वाह क्या बात है। हाँ चलिए बताइए, क्या सुनना चाहेंगे?
1: बरसात की एक रात फिल्म से मोहम्मद अजीज अरार के अंगी की सुरीली आवाज में कभी तक चीज से आपकी है, मैं इन्हें दिल का हुक्म सुन लिया। ये समीर का लिखा हुआ गीत,
0: लेकिन ये तो
1: लाल का संगीत बजा दीजिए।
0: ये तो शायद कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में है,
1: साथ में अलका अंगी भी है।
0: अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, चलिए सुनवाते हैं, वक्त बहुत ही कम है।
1: थैंक यू सर, थैंक यू, जल्द से जल्द आइए।
0: नमस्कार। आए दोस्तों, कॉलर फ्रेंड की पसंद पे ये गीत।

दोस्तों कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते रहिए और फिलहाल आपके रेडियो वाले दोस्त रोशन मुरारका को यहीं आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा किसी शाम, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शब बखैर।

0: ऐसा समा ना होता। सुनछिलम गानटी लता मंगेशकरेर कण्ठे, लिरिसिस्ट अंजान, कम्पोजार आर डी बर्मन, छवि जमीन आसमान। এবারের গান এটি।
1: খাওয়াতিন ওর হজরাত, আজ কি শাম ইস মহফিল মে আপকে পসন্দিদা কওয়াল জনাব চুলবুলে আসরানি সাহাব কো বুলা গয়া থা, মগর অচানক তবিয়ত খারাপ হো জানে কি ওজে সে ও চুলবুলে গুলগুলে হোকর বুলবুলে হো চুকে হ্যাঁ और इसलिए यहां नहीं आ सके। उनके ना आने की मैं जनाब कर्नल टिप्सी से माफी चाहता हूं, इस गुजारिश के साथ कि उनकी यह हसीन महफिल साज और आवाज के जादू से महरूम नहीं रहेगी। अगर मेरे सीने में दिल है और उस दिल में तड़प, तो उसका असर लाजमी है। अपनी आवाज से सब दिलों को जीतने का वादा तो नहीं कर सकता, मगर हुजूर ये नाचीज अगर एक रात में एक दिल भी जीत सका तो मेरी किस्मत चमक उठेगी।